हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिशोतो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिश सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग माँ।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: हाँ,

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

खुश होता हूँ आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: के शर्मा न जाए।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झोंके चले तो दिल

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इंसान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

93.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: क्या कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888891936। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार।
1: एक्सक्यूज मी सर।
2: हाँ,
1: ये मेरा इस्तीफा।
2: क्यों
1: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
3: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
4: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
5: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
6: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
7: आप लोग एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

आप सभी का अपना रेडियो मंचन धर्मशाला। बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है आप सभी की, अपनों के साथ एक नए पल, एक नई शुरुआत के साथ। बिल्कुल दोस्तों, और अब आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका का प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, पर अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और साथ ही काम जो है उसे भी प्रॉपर कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो काम जहाँ पानी की सुविधा पूरी तरह से है, खेतों के काम की बात करें तो उनका काम तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली चला हुआ है, लेकिन जहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं है, तो वो लोग तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बादल बरसेंगे और फिर हम जो हैं अपना काम शुरू करेंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये मौसम है, मौसम सबका साथ देता है। इंसान भले ही साथ दे ना दे, लेकिन मौसम को सबकी परवाह रहती है। समय समय के हिसाब से वो खुद को ढाल लेता है, हमें भी उसी तरह से हर एक सिचुएशन में, हर एक माहौल में खुद को ढालने की जरूरत होती है। तो इस प्यारी सी शुरुआत के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, क्योंकि दोस्तों 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का अब ये सफर आप सभी एंजॉय करने वाले हैं। आज 28 जून 2026 का दिन, देख लीजिए दोस्तों, समय पता ही नहीं चल रहा कब 1 जून हुआ और कब महीने की एंडिंग में पहुंच चुके हैं, लगभग एंडिंग में ही पहुंच चुके हैं ना। तो इसी तरह से बस समय हाथों से निकलता जा रहा है, महीनों तो छोड़िए सालों ऐसे हाथों से निकलते जा रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हमने किया ही क्या, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, देर किस बात की है, क्योंकि वो कल कभी आएगा नहीं, शुरुआत इसी पल आज से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। कल का इंतजार अगर आप करते रहेंगे तो वो कल तो शायद कभी आए ही ना, क्योंकि कभी आया ही नहीं है। कल तो कल कल कल कल बस बढ़ता ही जाता है। जी दोस्तों, तो इसीलिए हर एक पल को खास बनाइए, और जो आपने सोचा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसे अभी से शुरुआत कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, और उस जुनून के साथ बस आगे की ओर बढ़ते जाइए, बिना किसी के इंतज़ार के, बिना किसी के साथ के, खुद के साथ अपनी ताकत बनकर उन सपनों को पूरा कीजिए। फिलहाल दोस्तों, हमें भी इसी जुनून के साथ, इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, क्योंकि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और खास करके अपनों का दिन है। तो खेतों में भी अपनापन जरूर दिखता ही है। बिल्कुल दोस्तों, तो बहुत सारी बातें जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि बातों का पिटारा अभी खूब सारा है।

दोस्तों, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आज संडे के दिन आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, इस बातचीत और मनोरंजन के सिलसिले को इसी तरह से आगे की ओर लेकर चलते हैं और साथ ही बातचीत की बात की है तो बिल्कुल बातचीत का रुख करते हैं मौसम की ओर। तो दोस्तों, इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं और आप सभी को बता दें कि प्रदेश में अगले हफ्ते दस्तक दे सकता है मानसून। जी दोस्तों, प्रदेश के कई भागों में मानसून से पहले ही मौसम जो है वो लगातार खराब बना हुआ है। राज्य के कई क्षेत्र में जो है हल्की सी बारिश देखने को मिल भी रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां बारिश की अभी तक कोई संभावना या लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। कुछ एक दो दिनों से अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारी सी तेज सी धूप जो है वो चिलचिलाती सी आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल आज की बात करें तो हल्के फुल्के से बादल धर्मशाला में छाए हुए हैं और आगे देखते हैं किस तरह से साथ देता है मौसम, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और दोस्तों जो खेती का काम करते हैं उनके लिए तो बारिश जो है एक अनमोल है इस समय, है ना, मतलब कि बहुत कीमती है और चाहते हैं सभी की बारिश हो जाए, क्योंकि पहले का जो था ना थोड़ा सा आराम से काम किया जाता था। अगर हम इसकी धान बिजाई की बात करें, ऊर लगा रहे हैं आजकल लोग, तो कोई बात नहीं, दो दिन लग जाएंगे, तीन दिन लग जाएंगे, चार दिन लग जाएंगे, लोग आराम आराम से काम करते थे, पानी की भी इतनी दिक्कत तब नहीं होती थी क्योंकि प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाती थी। अगर प्रकृति से लिया जाता था तो प्रकृति की देखभाल भी की जाती थी और बदले में प्रकृति को दिया भी जाता था। जब प्रकृति हमें फ्री में इतना कुछ दे रही है तो हम क्यों पीछे हों, लेकिन आज के समय की बात करें तो हम पीछे हो चुके हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज जो है एक तरह से मानसून में परिवर्तन या ये जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं ये उसी के रीजंस हैं। लेकिन इंसान फिर भी सुधरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा, बस अपने स्वार्थ के लिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और नुकसान कहीं ना कहीं हमारा ही हो रहा है। जो किसान हैं उन्हें उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों कि जो हम हड़बड़ी में काम करते हैं कि बस एक दिन में सारा काम खत्म हो जाए, एक ही दिन में हम सारा निपटा दें, तो उससे क्या होता है कि थकान भी

बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और कहीं ना कहीं फिर वो जो है हम खुद को, खुद की हेल्थ को भी कहीं ना कहीं हम नुकसान की ओर लेकर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने यहीं रहना है, कहाँ जाना है, आराम से काम कीजिए। हाँ, ये होता है कि आज छुट्टी वाला दिन है तो लोग सभी एक साथ जुड़कर मिलजुल कर काम करेंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा। तो ये एक अपनापन है और सहयोग है। तो इसी इन्हीं जो कहते हैं ना कि पलों में एक जॉइंट फैमिली की वैल्यू जो है ना वो समझ में आती है कि भाई काश हम सभी एक साथ होते तो कितनी जल्दी जल्दी से काम हो जाता, कितनी जल्दी जल्दी से हम फ्री हो जाते। लेकिन आजकल का दौर तो ये है कि बस अकेले, जब इंजॉय करने की बात आए तो अकेले, लेकिन जब काम करने की बात आए तब मन में ये ख्याल आ जाता है कि काश पूरी फैमिली साथ में होती। तो ये जो विचार हैं, ये अगर हमारे मन में हमेशा के लिए हो तो कोई परिवार टूटेगा नहीं, कोई परिवार बिखरेगा नहीं। तो ये बातें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि परिवार का प्यार और अपनापन हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है हर एक मुश्किल समय से लड़ने की। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगर हम मौसम की अपडेट देखें तो 30 जून तक राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं अंधड़ चलने व बिजली गिरने की संभावना है। पहली और 2 जुलाई को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और 3 जुलाई को ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो होने की संभावना है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखने की भी ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, इसी अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

0: दोस्तों, ये बातचीत और मनोरंजन का सफर इसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। 11 बजे तक आप सभी एंजॉय करने वाले हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को, आज के दिन की शुरुआत के साथ, खूबसूरत से पलों के साथ। तो फिलहाल तो दोस्तों समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस बातचीत और मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां।
1: दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
2: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 और बच्चों के लिए 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं छूट ना जाए, उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
1: शूलिनी मेला आज संपन्न होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गायकों के नाम रही। संध्या में स्वास्थ्य मंत्री संग्राम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। गायक राजेश त्यागी, बीरबल किनौरा, अंजू तोमर और अंकुश भारद्वाज ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं इस अवसर पर ऐतिहासिक ठोडा प्रतियोगिता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से लोगों की सड़क निर्माण से जुड़ी वर्षों पुरानी मांगें पूरी हो रही हैं।
3: आज दिशा कमेटी की बैठक जिला चंबा की मैंने रखी थी। इस बैठक में करीब करीब 28 विभागों की मॉनिटरिंग होती है। ये वो 28 विभाग है जहाँ केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र की ओर से उपलब्ध किया जाता है। जो केंद्र की ओर से इन योजनाओं में फंडिंग होती है उसमें हमारी जिला का प्रशासन भी और हमारे जितने विभाग हैं इस योजना के तहत, उन सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष भी और उनके सोर्डनेट स्टाफ बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लगे हैं और जितनी फंडिंग आती है उसको 100% चंबा जिला में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं।
1: चंबा जिला के चुराह उपमंडल के नकरोड़ हिमगिरी सड़क मार्ग पर एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार ये हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य जारी है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि शहीद सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं और इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों को अनुदानित मेड़ों के प्रावधान की राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भेड़ों की बेहतर नस्ल विकसित

जिला प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित कर दिया है। उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तहत ये निर्णय लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मॉनसून पूर्व भारी वर्षा से लारची जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जल स्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारची पावर स्टेशन के लारची स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारची बैराज के सभी गेट खोल दिए जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और व्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। इधर सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह के चलते नाथपा स्थित NJHPS प्रबंधन ने आज सुबह 7 बजे से डैम के रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 145 क्यूमैक्स पानी छोड़े जाने की सूचना जारी की है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मानसून जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। स्पीति हिमालयन बौद्ध स्पीति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग की परिकल्पना रखा गया है। आयोजन का समापन 6 जुलाई को करुणा दिवस और 14 जुलाई को दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस समारोह के साथ होगा। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सामाजिक मूल्यों के प्रसार और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, कृषि ऋण के ब्याज पर 50% अनुदान देगी सरकार, 6,356 किसानों को मिलेगा लाभ। पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक के मुताबिक 3 लाख तक के बकाया कृषि ऋणों पर 50% ब्याज देगी सरकार। दिव्य हिमाचल व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है, बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। दैनिक जागरण लिखता है, हिमाचल में सरिया और इथेनॉल के नए उद्योगों पर लगी रोक। अमर उजाला की सुर्खी है, 10 जुलाई से शुरू होने वाली श्रीखंड यात्रा स्थगित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में आज 5 वर्ष की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज होगा समापन, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे शिरकत। चंबा के चुराह उपमंडल में एक निजी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अनुदानित मेड़ों के प्रावधान की योजना, भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान में हो रही कारगर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।

0: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ दिन की शुरुआत आप सभी कर रहे हैं इस प्यारे से सफर के साथ। जी दोस्तों, तो इस प्यारे से सफर में कुछ प्यारी सी बातें भी हो जाए तो क्या बात है। दोस्तों, आप किसी के काम आ रहे हो या इस्तेमाल हो रहे हो, दोनों में बहुत ही फर्क है। अगर आप किसी के काम आ रहे हो तो आपकी कदर होगी, सम्मान मिलेगा, आपकी खुशी में वो खुश होंगे और आपकी गैर मौजूदगी उन्हें महसूस होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो तो जब तक आपकी जरूरत होगी तब तक आपको बुलाया जाएगा। आपके समय, भावनाओं और अच्छाइयों का फायदा उठाया जाएगा और काम निकल जाने के बाद आपको भुला दिया जाएगा। ये है असल में जिंदगी का दस्तूर। जिंदगी का तो नहीं, लेकिन लोगों का दस्तूर। इसलिए हमेशा ये पहचानिए कि आप किसी की जिंदगी में अहमियत रखते हो या सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प हो। क्योंकि फर्क समझना तो खुद को खोने से बचा लोगे। इस फर्क को अगर आप समझ जाओगे तो खुद को खुद की नजरों में खोने से आप बचा लोगे। क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि हमें तो कोई इस्तेमाल कर रहा था और हम सच्चे मन से उन्हें अपना समझ बैठे, उनके साथ रिश्ता निभाते रहे और जब असलियत सामने आई तो फिर क्या, बस उदासी और पछतावा। तो इन बातों से बचने के लिए, खुद को खोने से बचने के लिए हमें इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है कि कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई वाकई में हमारी मौजूदगी से खुश है। कभी भी किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती मत आप ना तो किसी दूसरे इंसान को जबरदस्ती जोड़िए और ना खुद को फोर्स कीजिए जबरदस्ती किसी रिश्ते में रहने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जबरदस्ती के रिश्ते लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाते हैं, वो कुछ समय के बाद बोझ बन जाते हैं। ये यूं कहें कि ये जो झूठ, फरेब, धोखा, ये चीट जैसे रिश्तों में बातें आती हैं तो ये तभी आती हैं जब एक दूसरे से इंसान खुश नहीं होता। एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें बोझ लगने लग जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना रास्ता खुद चुनें। जी दोस्तों, तो आइए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों आप सभी के साथ एक जानकारी साझा करना चाहूंगी कि एक जगह पे एक महिला जो है वो शादी में जा रही थी अपने आभूषणों को लेकर, और कुछ कैश भी था उनके पास में, और रास्ते में ही उनका जो ये गहने और पैसे जो थे वो चोरी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है हमें बहुत ही सतर्कता के साथ, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सतर्कता के साथ जो है हमें निकलना चाहिए केयरफुली, और हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, तो जब हम इतनी कीमती चीज़ें अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, गहनों के लिए तो महिलाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो तो उनका दिल जानता है ना। और आज के समय में सोना और चांदी कितना महंगा है वो भी आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जब चोरी हो जाती है, सालों की मेहनत, इतनी मेहनत से कमाई गई ये जो अमानत है, तो सोचिए दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। खैर वहाँ तो उन चोरों को पकड़ लिया गया, और इस बात को आप सभी के साथ साझा मैं इसलिए कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि आज के समय में हर एक दूसरे दिन जो है आपको चोरी के केसेस जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं, कहीं दुकान के बाहर तो कहीं भी वो जो बातें हैं वो सामने आती हैं। लेकिन एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो केसेस, चाहे वो क्राइम केसेस हैं, चाहे वो चोरी के केसेस हैं, चाहे वो कोई भी केस है, जो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं आज के समय में, जिस तरह से ये नशा बढ़ रहा है, नशे की आग बढ़ती जा रही है, उतनी ही रफ्तार से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये न्यूज़ बढ़ती जा रही है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि खास करके युवाओं और बच्चों पे हमें खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो वो किस हद तक चला जाता है वो आप सभी जानते हैं। माना कि वो एक बीमारी है लेकिन लोग उसे थोड़ा सा एक अलग नज़रिया दे देते हैं, अलग नाम दे देते हैं, जिससे कि चाहे वो बच्चा है चाहे वो कोई युवा है, उससे उभर पाना उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। वहाँ हमें ज़रूरत होती है उनका सपोर्ट करने की, तो उस बीमारी से निकलने के लिए खैर एक फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी है, एक सोसाइटी सपोर्ट ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना, घर वालों की हम बात करें तो घर वालों को अगर पता चल भी जाएगा कि हमारा बच्चा अगर कुछ भी ऐसी हरकतों में जा रहा है, एक तो वो बात छुपाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर सोसाइटी में बात आ गई तो फिर हम कैसे किसी से नजरें मिला पाएंगे, कैसे हम किसी से बात कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों सोसाइटी ना तो आपके उस दुख भरे समय में साथ देगी, और ना ही अगर कुछ ज़्यादा वो बात बढ़ जाती है तब भी साथ नहीं देंगे। इसलिए हमें बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचना है, समय रहते जो है हमें स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जब नशे में जाता है तो वो अपने आप को अकेलापन, जब आपको लगे कि आपका बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, चिड़चिड़ापन जो है उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर वो घर से सामान गायब करने में, अगर आपको लग रहा है कि घर से कोई सामान गायब हो रहा है, पैसे गायब हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी इस बात को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हम जानते हैं कि वो अनजाने में ये सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन अगर समय रहते उसे प्यार से सपोर्ट के साथ उसे अगर नहीं समझाया गया तो एक दिन जो है वो उस छोटी छोटी सी गलती को एक बहुत बड़ा रूप दे देगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस बढ़ती नशे की आग को रोकने के लिए हमें ये छोटे छोटे से स्टेप लेने ज़रूरी हैं। दूसरों के घरों की हम बात ज़रूर कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर पे नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें घर पे झांकने की ज़रूरत है क्योंकि शुरुआत
खुद से होती है, अपने घर से होती है। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए, और अगर बच्चों के लाइफ को बचाना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को ये खास ध्यान देना होगा, और बच्चों की गलतियों पे पर्दे डालने के बजाय उन्हें उस गलती पे रोका जाए, टोका जाए और समझाया जाए। ज़रूरी नहीं है उन्हें डांट फटकार कर ही समझाया जा सकता है, उन्हें एक उन्हीं के नज़रिए के, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम इन बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं कि एक अलग तरीके से। वो भी अब पेरेंट्स को सोचना होगा कि वो किस तरह से समझा सकते हैं या किस तरह से उन्हें एक सही दिशा में लेकर आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि बच्चा उस दलदल से बाहर निकल सके, उस बीमारी से बाहर निकल सके। तो सबसे पहले तो ये नशेड़ी वाला टैग जो हम लगा देते हैं, उसे साइड में रखिए और उसे एक बीमारी समझकर उनका साथ दीजिए, प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए, क्योंकि उस समय उन्हें सिर्फ प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये है कुछ खास बातें, एक छोटी सी जानकारी से जो है इतनी गहराई वाली बात तक पहुंच गई हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना कि बात से ही बात निकलती है, और कई बार ये बातें हमें हेल्पफुल होती हैं और हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें एक सही राह दिखाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए भी ये एक बात जो है वो इफ़ेक्टिव हो और इम्पॉर्टेंट हो। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और हमारी ज़िंदगी में इम्तिहान हर पल, हर एक सिचुएशन, ज़िंदगी जो है इम्तिहानों के साथ ही चलती है, तो वही इम्तिहान जो है हमें ज़िंदगी में ताकतवर भी बनाते हैं और हर एक सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत भी वो हम में लेकर आते हैं। तो ये तो ज़िंदगी भर चले ही रहते हैं, लेकिन कई बार हम डर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन हमें बिखरना नहीं है, हमें उन हालातों को संभालते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, इसी के साथ हमें कार्यक्रम में भी आगे की ओर ही बढ़ना है, तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और जानकारी की ओर। दोस्तों, जिस तरह से स्कूलों में हम वैसे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले नशे की बात की है, तो बच्चों को कहते हैं ना कि स्कूल में तो शिक्षक अपना समय दे ही रहे हैं, उन्हें अपनी नज़र के सामने रख ही रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी थोड़ा सा दायित्व है, और पढ़ाई के साथ साथ जो है उनकी स्किल्स पे काम करना भी बेहद ज़रूरी है। और देखा भी है हमने कि अब जो है नए नए चेंजेस आ रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो इसमें करिकुलम में ऐड किए गए हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई से हटकर या पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करने की होड़ में भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे में जो टैलेंट है वो यहीं से पता चलता है जब वो हर एक एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करता है। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो कैसे समझ पाएगा, ये कैसे जान पाएगा कि उसके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत होती है। तो इसी तरह से दोस्तों, एक ऊना की बात है ये, और ऊना में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र जीतपुर बेहड़ी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट का भविष्य भले ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन अब इसी क्षेत्र को एविएशन हब के रूप में विकसित करने की पहल सामने आई है। एयरो माइल्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो जीतपुर बेहड़ी में मोटर ग्लाइडर शो का आयोजन कर हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना का संकेत दिया। जी दोस्तों, कंपनी के प्रशिक्षित पायलट ने मोटर ग्लाइडर का सफल प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो ये छोटी छोटी सी पहले हैं दोस्तों, बच्चों की एक पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल से टलते हैं, सभी की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बच्चों की हम बात करें, क्योंकि जब टोटली हम किताबों की ओर आकर्षित हो जाते हैं या प्रेशराइज किया जाता है तो हम बोर से फील करते हैं, लेकिन वहीं अगर उस पढ़ाई को अलग क्रिएटिविटी के साथ बच्चों के सामने लाया जाए, बच्चों को इंजॉय के तौर पे उन्हें पढ़ाया जाए, तो बच्चा कौन ऐसा है जो नहीं करेगा पढ़ाई भी और इंजॉय भी। लेकिन जो पेरेंट्स उन्हें कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाना है, म्यूजिक की तरफ नहीं जाना है, ये आपकी फील्ड नहीं है, तो ऐसा सोचना हमें सबसे पहले बंद करना होगा। अब हमारी इस मानसिक सोच में बदलाव लाना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये छोटे छोटे से साधन जो हैं वो मनोरंजन का साधन है। अगर वो खुद को इन चीज़ों में बिजी रखेंगे तो वो गलत रास्तों की ओर नहीं जाएंगे। तो ज़रूर इन बातों पे ध्यान दीजिए समय रहते, क्योंकि अब नहीं तो शायद कभी नहीं। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों का ये सफर आप सभी के लिए रहता है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा। तो आइए इस सफर को बढ़ाते हैं आगे और एंजॉय करते हैं एक प्यारा सा गीत। उसके बाद फिर से लौटते हैं कुछ खास जानकारियों और बातों के साथ।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं अपनी इस बातचीत के साथ, अपने इस खास दिन के साथ। दोस्तों, हर दिन को खास बनाया जा सकता है, हर पल को खास बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों, परेशानियां अक्सर उस खुशी भरे माहौल को कहीं ना कहीं दुख में बदल देती हैं, क्योंकि हम सोचते ही इतना है कि सोच सोच कर चाहे चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन वो बातें जो है वो जो हमें परेशान करती हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हर एक पल को ना दुख भरा बना देते हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे दोस्तों कि ये जो हमारे आसपास ये घटनाएं घटित जो हो रही हैं, चोरी की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर हम बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी बात करें या नशे से जुड़ी बात करें, तो हर एक चीज़ जो है आपस में रिलेट करती है। लॉजिकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रिलेशन है, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि बच्चे हैं, नादान हैं और कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। लेकिन समझते समझते संभलते संभलते समय हाथों से निकलता जाता है और हम खुद नहीं समझ पाते कि हम कहाँ पहुँच गए, और शायद हमने समय रहते चीज़ों को संभाल लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हम ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर सोसाइटी को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी को ही पता चलता है। हम भले ही उनसे छुपा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सब पता होता है। तो हम छुपाते क्यों हैं? हम क्यों पर्दे डालते हैं? हम अपने ही घर को तोड़ रहे होते हैं, हम अपने ही घर को बिखेर रहे होते हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम अपने इंजॉयस के लिए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम अपने में ही मस्त रहने के लिए घर पर ध्यान नहीं दे पाते। हम दूसरों की जिंदगियों में ताका झांकी करने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन अपने घर में अपने आसपास क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं होता, उसके लिए हमें समय नहीं होता। या यूं कहें कि वो सब जानकर भी हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बस पर्दे डाल रहे होते हैं, गलतियों को छुपा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं। लेकिन कब तक ऐसा ना हो कि वो आपकी गलतियों का छुपाना आपके लिए ही भारी बढ़ जाए, आने वाला कल आपके लिए ही मुश्किल हो जाए, उस पल का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि हम दूसरों के साथ जैसा करेंगे भरेंगे तो वैसा ही, हम दूसरों को परेशान करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, दर्द देंगे, तो कहते हैं एक ना एक दिन तो उन कर्मों का फल मिलता ही है। तरीका कुछ और हो सकता है, रास्ता कोई और हो सकता है, लेकिन भुगतना तो पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में किसी के भी साथ गलत मत कीजिए, हो सके तो। बाकी तो जिसकी एक हैबिट बन चुकी है दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों को खुद से मतलब कि वो करने की, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अगर आप सही हैं तो आगे ईमानदारी के साथ बढ़ते रहिए। जिसने गलत करना वो गलत भुगतेगा, है ना? तो इस बातों से हमें हमारे जो एक जुनून है, हमारा जो एक कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर लोगों की बातों का असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनकर आगे बढ़ना। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इसी के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा मीठा सा गीत। आइए इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को फिर से लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक और बहुत ही खास जानकारी। नशे की हम बात कर रहे थे और नशे से ही जुड़ी ये जानकारी है। दोस्तों देश में बढ़ते गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर माफ करना दोस्तों नशे से जुड़ी नहीं लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाती हैं, तो ये जरूर कह सकते हैं कि रिलेशन आपस में इनका बैठ सकते हैं। तो देश में बढ़ते गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाना अनिवार्य है। मानव तस्करी रोकने को 4 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। जी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को पूरी तरह से सक्रिय किया जाएगा। साथ ही सभी पुलिस थानों को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा गया है, जहां गुमशुदा बच्चों महिलाओं और मानव तस्करी से जुड़े मामलों का रियल टाइम डाटा उपलब्ध रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेषकर बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस बिना किसी देरी के भारतीय न्याय संहिता 2023 की अपहरण और मानव तस्करी संबंधी धाराओं के तहत तुरंत FIR दर्ज करेगी। जी दोस्तों प्रारंभिक जांच या परिजनों के इंतजार का बहाना अब स्वीकार नहीं होगा। इस आदेश के बाद अब हर राज्य में समीक्षा बैठकें कर लापता बच्चों और महिलाओं की त्वरित तलाश के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो दोस्तों अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये जानकारी नशे से कैसे संबंधित हो सकती है, कैसे रिलेट हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि जो नशे की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, एक तरह से लत में वो चले गए होते हैं, तो वो नशे के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। कुछ चोरी का जो है वो अपनाते हैं, चोरी करते हैं या किसी भी तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जिससे कि उन्हें पैसे मिल सकें या कुछ भी, क्योंकि ये एक ऐसी आंख है, ऐसी लत है, एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत मुश्किल है। इससे कहते हैं ना कि जब इंसान खुद इससे पीछे हटना चाहे लेकिन वो मजबूर हो गया होता है, वो नहीं इस बीमारी से छुटकारा पा पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का टैग, क्योंकि सोसाइटी उन्हें नशेड़ी की नज़र से देखती है, उन्हें टैग लगा देते हैं, तो वो चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें वो सपोर्ट, वो अपनापन नहीं मिल पाता है। तो मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि आपके घर में अगर ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नज़र आती हैं, आपके बच्चों में, आपके चाहने वाले या आपके रिश्तेदारों के बच्चों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, बच्चे नहीं बड़ों में भी ये चीज़ें जो है आप सभी नोटिस कर सकते हैं कि जो अकेलापन कई बार होता है, कुछ रीजंस और भी हो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बात करनी होगी, हमें उनके साथ समय बिताना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि असल रीज़न क्या है। लेकिन हम अपने फ़ोन में ही बिजी रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक फोन ही चलाते रहेंगे तो बच्चे राह से भटकते रहेंगे। तो थोड़ा सा समय जो है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं बच्चों को ना, अगर कहते हैं ना कि जब वो अपनी होश संभाल लेते हैं एक तरह से, वो बड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ उनकी 10th तक भी अगर आप उन्हें एक अच्छी परवरिश दे देते हैं ना, उस तक भी अगर आप उन्हें एक अच्छा माहौल दे देते हैं, तो बच्चा समझ आता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और घमंड और सुख सुविधाओं का सहारा थोड़ा लिमिट में लीजिए। इस पर भी ज़रूर बात करूंगी कि क्यों लेना चाहिए, आप यही सोच रहे होंगे कि क्यों, तो उस पर भी हम ज़रूर आएंगे। लेकिन आइए दोस्तों उससे पहले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का जीवन जीने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नजरिया होता है। भगवान इंसान को भेजते तो एक ही तरह के, लेकिन आगे चलकर हमारी नजरिए के सोच के साथ जो है हर कोई अलग अलग हो जाता है। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, तो कोई रंग भेदभाव, लिंग, मतलब बहुत सारी चीजें। जब वो पैदा होता है ना, तब उसे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, दुनिया की नजरों में आता है बच्चा, उसे बहुत सी चीजें सामने आती हैं। तो हमें क्या लगता है दोस्तों, जिंदगी में जो लोग दूसरों को सोचकर, दूसरों की बातें सोचकर अक्सर जिंदगी में कुछ भी करना चाह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पहले ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, अगर हम ये कपड़े पहन रहे हैं, हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हम शॉप पे काम करने जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो किसी के शॉप में काम कर रहे हैं, ये तो किसी के घर पे काम कर रहे हैं। वही काम अगर हम अपने घरों में करें तो कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन अगर बाहर जाके करने लग जाए तो एक अलग ही टैग लग जाता है। हम इंसानों की सोच बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा। जी दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपना जीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की सोच या नजरिया किस तरह का है। और दूसरे वो जो हर कदम पर ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो पहले लोग तो इतिहास बनाते हैं और दूसरे लोग केवल इतिहास पढ़ते ही रह जाते हैं। सबसे खतरनाक कैद जेल की सलाखें नहीं होती, बल्कि वो डर होता है जो इंसान के मन में बैठ जाता है, और ये डर उसकी प्रतिभा को दबा देता है, उसके सपनों को मार देता है, उसकी पहचान को भीड़ में खो देता है। सच तो ये है दोस्तों कि दुनिया कभी किसी से संतुष्ट नहीं होती। अगर आप गरीब हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर आप अमीर हैं तो लोग आपसे जलेंगे। अगर आप असफल हैं तो लोग आपको कमजोर कहेंगे, अगर आप सफल हो गए तो वही लोग आपकी किस्मत पर सवाल उठाएंगे। जब हर हाल में लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही, तो फिर उनके लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करना। याद रखिए, शेर कभी भेड़ों की राय नहीं पूछता कि उसे कैसे चलना चाहिए, वो अपनी ताकत पहचानता है, इसलिए पूरा जंगल उसका सम्मान करता है। उसी तरह से जिस दिन आप अपनी असली शक्ति पहचान लेंगे, उसी दिन लोगों की आवाजें आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगी। आपकी पहचान कपड़ों से मत बनाइए, अपनी पहचान दिखावे से मत बनाइए, अपनी पहचान लोगों की तालियों से मत बनाइए। ऐसा चरित्र बनाइए कि आपकी खामोशी भी आपकी पहचान बन जाए। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। दोस्तों, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। इसलिए एक निर्णय आज ले ही लीजिए कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतार फेंकिए। आसान रास्ता जो है वो मुश्किलों की ओर बढ़ाता है, लेकिन जो अकेला रास्ता होता है अकेलेपन का, वो मुश्किल तो होता है लेकिन सिखाता बहुत कुछ है, और एक बेहतर पहचान भी बनाता है। अपनी सोच को स्वतंत्र कीजिए, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए, और अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाइए कि दुनिया आपको देखकर नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले, क्योंकि अंत में लोग आपकी बातों को भूल जाते हैं, आपका चेहरा भी भूल सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों से बनी आपकी पहचान लोग कभी नहीं भूलते।
तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन इसमें बहुत गहरा सा सबक आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की थी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, अमेरिका ने सूडान में चल रहे गृह युद्ध को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क से संबंध रखने का आरोप में 8 लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। ये नेटवर्क सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस दोनों के लिए हथियार खरीदने और लोगों की भर्ती करने और लॉजिस्टिकल सहयोग देने का काम करते हैं। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार ये नेटवर्क कई देशों में फैले हुए हैं और हथियार, विस्फोटक और विदेशी लड़ाकों की सप्लाई में शामिल है, जिससे कि दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग और वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा घोषित इस कार्रवाई का मकसद उन नेटवर्क को रोकना है जिन्हें अधिकारियों ने सूडान के युद्ध को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क बताया है। ये नेटवर्क SAF और RAF दोनों को हथियार, विस्फोटक और लोगों की आपूर्ति करते हैं। जी दोस्तों, तो जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, कहीं तो कहते हैं समझौते का जो है एक पहलू सामने नजर आता है, लेकिन कहीं वो फिर से उसी तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों सोचिए कि जब देशों की आपस में लड़ाई हो रही है, तो किस तरह से जो है एक माहौल जो है वो उलझा सा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान इस परेशानी से जूझ रहा है। तो हम तो यही प्रे कर सकते हैं कि किसी तरह से शांति को बनाए रखा जा सके, लेकिन हम तो आपस में ही लड़ने झगड़ने पे बैठे हुए हैं, तो हम कैसे इस बात के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपसी मतभेद ही हमारे खत्म नहीं होते हैं, तो एकजुट होकर देश के लिए लड़ना कैसे पॉसिबल है। ऐसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब समझदारी की बात आती है, जब एक मैच्योरिटी की बात आती है, तब हम सारे पीछे हो जाते हैं। क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया में देखेंगे ना दोस्तों, हर एक घर की एक अलग कहानी सबके सामने। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो एक छोटी से छोटी बात भी हर एक इंसान तक पहुंच जाती है, चाहे आसपास पता ना हो, लेकिन हाँ दूर दूर तक बात सबसे पहले पहुंच जाती है। तो हर एक बात को ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करना क्या सही है, क्योंकि जब हम उसे बताते हैं एक अलग तरीके से, तो मामला जो है ना वो और ज्यादा गर्मा जाता है, और हो सकता है कि शायद कुछ गलत फहमी हो और वो बात सॉल्व हो सकती हो, समाधान हो सकता हो, लेकिन सोशल मीडिया का रूप लेकर वो सुलझने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है, और ज्यादा उसमें जो है एक तरह से मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और जो मजे लेने वाले लोग होते हैं ना, वो उन बातों का मजा ले लेते हैं, हमें लगता है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो असल में मजे ले रहे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम किसी को ज्यादा वो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आपने अपनी आंखों सामने देखा होगा कि जब भी कोई घटना हमारे सामने हो रही होती है, चाहे किसी लड़की के साथ कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा हो या कोई उसे तंग कर रहा हो, तो लोग बस थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर वो बोल दिया कि नहीं आपसी मामला है, और लड़की भले या लड़का मना भी कर रहा हो कि नहीं भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी लोग उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे कि भाई इनका आपस का है, हम क्यों बीच में पड़े। अरे जब आपको हेल्प करने की ज़रूरत होती है, तब तो आप करते नहीं हैं, तब आप तमाशा देख रहे होते हैं या तो वीडियोस बना रहे होते हैं। भले ही किसी की जान चली जाए, भले ही किसी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए, लेकिन हमें वीडियोस बनानी है या दूर खड़े रहकर तमाशा देखना है। तो इससे अच्छा है कि आप उससे मतलब कि उस बात का वो हिस्सा ही मत बनिए, है ना। तो या तो हम जो बड़ी समझदारी की बात करते हैं कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, वो मत कीजिए। तो
तो ये सारी बातें हमसे रिलेट करती हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमें मैच्योरिटी की ओर लेकर जाती है। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ जो है सपोर्ट करें, वहाँ मदद करें। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की इज्जत बदनाम होने से बच जाए, क्योंकि लोगों का काम है बेवजह किसी पे भी कीचड़ उछालना, बेवजह किसी को बदनाम करना। चाहे छोटी सी बात होगी लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर उसे एक ऐसा रूप दे दिया जाता है कि क्या ही बोले। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए, और अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के लोग होने का फर्ज भी ज़रूर निभाइए। तो फिलहाल इसी के साथ आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और उम्मीद है दोस्तों कि ये प्यारा सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, और बातों और इस प्यारे से मनोरंजन के सफ़र के साथ बढ़ते बढ़ते कब 11 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। 9 बजे तो अभी शुरुआत की थी, मुझे तो यही लग रहा है कि बस अभी बैठी थी, और देखिए अभी 2 घंटों का सफ़र हमने तय भी कर लिया, और अभी तो कुछ बातें भी इतनी ख़ास नहीं हुई, इतनी जानकारियां भी आप सभी तक नहीं पहुंचाई। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सिलसिला तो इसी तरह से चलता रहेगा, आना जाना ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है ना। कोई बात नहीं, इंतज़ार और कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो अगर आप इंतज़ार नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं कैसे आऊँगी आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। तो बिल्कुल ब्रेक ज़रूरी होता है जी दोस्तों। तो हमारा ये सफ़र अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है दोस्तों जहां अलविदा होने का समय नज़दीक है, क्योंकि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र रहता है, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी कुछ ख़ास जानकारियों के साथ जो है हमने आज का ये कार्यक्रम एंजॉय किया। तो बिल्कुल दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अलविदा अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को, और जाते जाते एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
10: आप लोग
11: एच आई वी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।
1: Right, my name is Anthony Gonsalves.

0: Excuse me, please.
1: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? नहीं, अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों?
4: सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार।
12: काम कीजिए आप लोग।
10: HIV AIDS अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हर हफ्ते की तरह आज भी हम बढ़िया बढ़िया गाने सुनेंगे और उसी के साथ मैं आपको फिल्मी सितारों के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगी जो कि हर कोई नहीं जानता। आज हम जिस बॉलीवुड स्टार के बारे में बात करने वाले हैं, वो अगर एक बार अपना 2.5 किलो का हाथ उठा दे तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आई एम श्योर कि अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सनी देओल की। फिल्मों में चाहे वो एंग्री यंग मैन की तरह दिखाई देते हों, इस तरह के रोल्स प्ले करते हों, लेकिन असल जिंदगी में ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। इनफैक्ट काफ़ी शांत और काम इंसान है ये। सनी ने बॉर्डर, गदर, डर, जीप, घातक, दामिनी जैसे कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। सनी हमेशा से ही मीडिया के सामने लो प्रोफाइल रहा करते थे, स्पेशली विद हिज पर्सनल लाइफ। वैसे उन्हें अपनी फिल्म दामिनी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, इवन दो वो सिर्फ सेकेंड हाफ में आए थे इस फिल्म के। उनके डायलॉग्स सुपर हिट हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को काफ़ी प्रॉब्लम थी सनी की पॉपुलैरिटी से? क्या किस्सा था ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक रोमांटिक गाना कुमार सानू और साधना सरगुप की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज सनी देओल की फिल्मों से कुछ गाने आपको सुना रही हूं, जो कि मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से हैं। आई होप आपको आज के ये गाने अच्छे लग रहे हों। वैसे जब दामिनी फिल्म रिलीज होनी थी, तब फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स से बहुत नाराज थे। वो इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने शहर शहर में हर जगह सिर्फ सनी देओल के पोस्टर्स लगाए थे। राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, वो बड़े ही अपसेट थे, इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने ऋषि कपूर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने ऋषि कपूर के सोलो पोस्टर्स प्रिंट भी नहीं कराए थे। एक्चुअली राजकुमार जी ओरिजिनली चाहते नहीं थे कि सनी देओल का मेंशन भी हो फिल्म की पब्लिसिटी में, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक सरप्राइज हो जो कि लोगों को बाद में पता चले। वो चाहते थे कि एक परछाई सी दिखाई दे बस एक इंसान की, और बाद में ये पता चले कि ये सनी देओल की परछाई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राजकुमार संतोषी जी नाराज हो गए। पर क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म के कारण आमिर खान को अंदाज अपना अपना मूवी मिली थी? हुआ यूं था कि आमिर खान अपना कैमियो रिकॉर्ड करने स्टूडियो में गए थे, और तब वो राजकुमार संतोषी जी से मिले, और तभी संतोषी जी ने आमिर खान को साइन कर लिया फॉर अंदाज अपना अपना। अब दामिनी फिल्म से चलिए आपको एक और गाना सुनाती हूँ, और उसके बाद कुछ और बातें करेंगे सनी देओल के बारे में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। ये जो गाना है, ये गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

बेताब फिल्म से था ये गाना, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। सनी देओल की जिंदगी के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं, उन्हीं की फिल्मों से गाने आपको सुना रहे हैं। बेताब फिल्म के बारे में बात करें तो ये सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी ऑपोजिट अमृता सिंह। ये फिल्म सुपर हिट हो चुकी थी और सनी और अमृता की ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी हिट हो गई थी। मतलब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सनी और अमृता के रिलेशनशिप की खबरें आने लगी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया क्योंकि सनी शादीशुदा थे और इसका सच अमृता को पता चल गया था। ऐसे बॉलीवुड में सिर्फ अमृता ही नहीं थी जिन पर सनी ने अपना दिल हारा था। वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड डिम्पल कपाड़िया के साथ भी सनी रिलेशनशिप में थे। इस बार ये रिश्ता थोड़ा ज्यादा सीरियस और सब्सटैंशियल भी था। सुना है दोनों ने भागकर शादी भी की थी लेकिन कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। सुना है इनका रिलेशनशिप कुछ 11 साल तक चला था, लेकिन फिर सनी देओल की बीवी पूजा सामने आई, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, और इसके बाद जो कांस्टेंट अफेयर्स थे सनी देओल के, उन्हें फुल स्टॉप लगाया। सनी देओल की शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी, हमेशा उन्होंने एक लो प्रोफाइल रखा मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। मैं यही कहूँगी कि बीवी के डर से कौन बच पाया है कि नहीं। तो यहाँ पर डर फिल्म से ही गाना सुनाते हैं आपको। पूजा देओल के डर के कारण सनी ने अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लेकर के आए थे, तो उसी के चलते डर फिल्म से अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। हिंदी सिनेमा में सनी देओल ने हमेशा अपनी फ्यूरियस और देसी इमेज दिखाई है और इनके सभी दोस्त और फैमिली मेंबर्स मानते हैं कि ये अपनी रियल लाइफ में काफ़ी काम और कंपोज्ड हैं, पर कभी कभी तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है और इसी गुस्से के कारण इनके झगड़े हुए राजकुमार संतोषी, जेपी दत्ता, सुनील दर्शन जी के साथ में, और सनी देओल ने इन सभी के साथ में बाद में काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण हमें इनकी कम और कम फिल्में दिखाई देने लगी। आपको पता है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि डर फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ था जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था अपने रोल के बारे में। जिस तरह से उनका रोल शेप अप हो रहा था वो उनके हिसाब से नहीं था, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यश जी इतने सीनियर थे कि उन्हें कुछ बोल तो सकते नहीं थे ये। तो सनी ने अपने हाथों को अपनी जेब में डाला और खूब गुस्से से अपने जेब के अंदर ही पंच करने लगे, इतनी तेज कि सबके सामने उनकी पैंट फट गई थी और फिर सबने हंसना शुरू किया और तब जाकर के सनी देओल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। तो अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही रही है तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ, लता दीदी और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। दरवाज़ा बंद कर लो, स्टे ट्यून्ड।

0: अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर दिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हैनली के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम गहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात। तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों?
4: सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके?
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: रिजन कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: श्रोताओ आओ सुनते ने कार्यक्रम का सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए? बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों संध्यों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात। तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
4: रिजाइन कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित, मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

कानू दश मिलप तो मेगा हर्ट्स पर यह है तू हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। स्वागत अहां करी ते कने तुहां सारे भी अपना अपना रेडियो सेट जेड़ा से ऑन करी लिया होना है कने अगर नहीं कीते तो समय दी जेड़ा घड़ी है से तुहां सारे जो ही पता है कि 2 बजे करी 2 मिनटा कार्यक्रम च होइयां ने कने ये सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो इस सफर कन्ने जुड़िया कने अहां शुरुआत जेड़ा से जरूर करती है कने अहां दे जेड़ा श्रोता न सभी जरूर जुड़ी हो न या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करना भी यहाँ जो शुरू हुई हो न तिना जो भी पता है कि इस कार्यक्रम दा जिना समय तिना तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो शो तो पहले तो हम अपने कार्यक्रम दा आगाज़ कर दे न फिर ही जिड़ा बाकी गल्ला न से कर दे न।

0: करी सकदे। तां मिंजो लग्गा दा तुहां नंबर जिहड़ा है से नोट करना शुरू होई होणे न, तां नंबर है 701-8117091। ये नंबर तुहां तक पहुँचाई तां है करे तुहां सारे भी इस नंबर पर कॉल करी सकदे ज़रूर। अहां दे पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हैं, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते सभी जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी धन्यवाद, ठीक है ना
0: जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथू ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
1: हाँ दाड़ी से बोला रहे कने मेघनाथ दा
0: जी। मेघनाथ जी, आज कना जिड़ा दिन ने से तुहां दा किस प्रकार चलिया? बरखा दी जरूरत ता ज्यादा है ना जी?
1: सारे परेशान है बेचारे, जिमीदार क्या करना, टाइम लग गया।
0: जी जी
1: जी
0: हां जी, ठीक ठाक है जी। जी तो मेघनाथ जी, आज अहां कार्यक्रम च जिहड़ा गलबात करनी है से करनी है कि दिन भर अहां जिहड़ा है से बैठी करी एसी दी हवा जिहड़ा है से जरूर जिहड़ा है से लैंदे ना जी? एसी दी हवा जी जी जी ता कुथी ना कुथी से
1: आंदी सारे दा कमरे ठंडे ना
0: जी? अच्छा ठंडे ना?
1: हां ऊपर उपरली मंजिल पाई उसा थल्ले वाले कमरे ठंडे
0: जी, पर कुथी ना कुथी ये जेड़ा एसी दी हवा है से आहां दे स्वास्थ्य जो नुकसान जेड़ा है से जरूर पहुंचांदी है ना जी?
1: सर्दी बिल्कुल आ पक्का नहीं लांदे, आ पक्का नहीं लांदे
0: जी। अच्छा पंखा भी नहीं लगांदे?
1: हां जी
0: जी। ता तुहें क्या लगदा एसी दी हवा जेड़ा से आहां जो लेना चाहिदी कि नहीं लेना चाहिदी? जी जी तुहांदी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आउंदी जी।
1: जी
0: जी जी जी तो मेघनाथ जी, आज तुहां कुंदिया जेड़ा गीत है से सुनना पसंद करके?
1: माता सुनना का भजन
0: जी कुंदिया
1: चरणा च बाण गंगा।
0: तुहांदी आवाज कुछ क्लियर नहीं आउंदी जी।
1: वैष्णो माता दे चरणा च बाण गंगा सुनना था
0: जी? वैष्णो माता दे चरणा च बाण गंगा ना जी?
1: हां जी हां
0: जी जी, जरूर ये भजन तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ये है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओ, आज यहाँ कार्यक्रम च गलबात करनी है कि दिन भर जिहड़ा से यहाँ एसी दी हवा जिहड़ा से यहाँ जो कुथी ना कुथी यहाँ दे स्वास्थ्य पर नुकसान जिहड़ा से जरूर पहुँचांदी है। तो तुहां भी जरूर दसा कि एसी दी हवा जिहड़ा से यहाँ दे स्वास्थ्य जो जिहड़ा से जरूर नुकसान पहुँचांदी है, पर जिहड़ा नेचुरल हवा है या पेड़ पौधे न तिना दा यहाँ दे जीवन च कितना ज़्यादा महत्व है, तो ये उपर अहां गलबात करनी है। कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सती जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हां जी हां, ठीक ठाक है। तुहां बोला
0: जी? यहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथू ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
2: मैं त्रिलोकिया ते बोला लगना, रमेश मेरा नाम है
0: जी। रमेश जी, क्या काम काज लग गया तो हां, क्या करा दे?
2: कोई काम काज मिला या बरखा दिन तो जा रहे जानो, पानी आया नहीं जरा रोड लगन कर दे
0: जी। अच्छा पानी जेड़ा से नहीं है कने बरखा दा जेड़ा इंतजार है से करा दे?
2: हां जी
0: जी। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾ ਕੁੰਦਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ।
2: ਕੌਣ ਚਾਰਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਚਾਰਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਡੱਬੀ ਦਾਣੇ ਦਾ
0: ਜੀ ਕੁੰਦਿਆ
2: ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘਾ।
0: जी जी जरूर, ये गीत ये फरमाइश तुहों तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहों दा जी। पशु तो कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तुहों जो लेकर चलते हैं फरमाइश की ओर। सुनते नहीं सा फरमाइशा जो ये फरमाइश अह तक पहुँची हो है बड़ साहब के माध्यम ने। तिना का नाम है सुनील कुमार जी कने से रहने वाले ने कोठियाँ जलोट ते। तो सारी भी इस फरमाइश जो इंजॉय करा।

तुहा सारा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या गीत संगीत के बाद हाँ फिर ते अपनी गलबात ऊपर जरूर जिड़े से आइयो न कने समय जिड़े से तुहा तक दसंत समय 2:21 कार्यक्रम च होइए न जीवन जीवन जिड़े से अहाँ अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं जीवन च हर चीज़ अहाँ जो जिड़े से नहीं मिलती है। अगर अहाँ ल पैसा है तो अहाँ ल रिश्ते कम होने न अगर अहाँ ल रिश्ते न तो अहाँ ल जिड़ा अहाँ दी सेहत है से कम होनी है। पैसे रिश्ते कने जिड़ा अहाँ दी सेहत है से तीनों ही अहाँ दे जीवन च अगर मिली आती है अहाँ जो तो कुथी ना कुथी अहाँ दी जिड़ा जीवन ही अहाँ वास्ते जिड़ा है से कम पे आता है। दशो तो जिंदगी दा जिड़ा सफ़र है से अहाँ जो हर पल इंजॉय करना चाहिए क्योंकि आजकना जिड़ा दिन है अहाँ कई बार ये सोच विचार करना शुरू हो जाते न कि नहीं आजकना जिड़ा दिन है से नहीं अहाँ कल पर जिड़ा है से छड़ी देन आजकना काम मैं तो अहाँ ये सोची करी चलते न कि कल करी लेंगे पर कल को नहीं दिखा आजकना काम मैं आजकनी खुशी है आजकना जिड़ा दिन है तिस जो आज ही इंजॉय करा। अगर अहाँ आजकने दिने जो आज ही इंजॉय करते न कने हर पल जो इंजॉय करते न तो अहाँ अपनी जिंदगी दा जिड़ा सफ़र है उस जो जरूर इंजॉय करी पाते न क्योंकि आजकने दौर की अहाँ गल करिए तो कुथी ना कुथी सेहत जिड़ा से अहाँ जो दस्तक देना शुरू हो जाती है कुंडिया जिंदगी दा जिड़ा पल है या कुंडिया आने वाला जिड़ा समय है से अहाँ वास्ते किस प्रकार रहने से बिल्कुल पता नहीं है तो उन्हें दा जिड़ा समय है उन्हें दा जिड़ा पल है उस जो जरूर इंजॉय करा सभी अपने कन्ने अहाँ अपने जो समय दिंदे न या खुद जो अहमियत दिंदे न या कई बार अहाँ भी सोचते न कि अहाँ अपनी किस्मत जो भी कोसना जिड़े से शुरू हो जाते न तो किस्मत जो ना कोसी करी अहाँ अपनी जिंदगी दे सफ़र जो इंजॉय करते न कने जेड़ा अहाँ खुशियां न तिना जो फुल इंजॉय करते न तो अहाँ अपनी जिंदगी जो जरूर बेहतर जिड़े से बनाई लेंदे न दशो तो गल बात अहाँ करा दे न कि दिन भर अहाँ जिड़े से एसी दी हवा जिड़े से जरूर लेंदे न पर पुराने समय दी गल बात अगर अहाँ तुहां तक साझा करन तुहां तक पहुँचान तो तुहां जो भी जरूर जिड़ा पुराने समय दियाँ यादा न या पुराने समय दियाँ गल्ला न से अहाँ जो बार बार याद आंदियां न कि कच्चे मकान थे पर तिश जिड़ा ठंडक थी या गर्मी दा जिड़ा एहसास है से अहाँ जो बिल्कुल नहीं आंदा था कने इसी कन्ने फ्रिज दा पानी अहाँ पींदे न कुथी ना कुथी है अहाँ वास्ते ठंडा है अहाँ सोचते न कि अहाँ कोई भी काम कार करी करी आंदे न कने अहाँ एकदम जिड़े से पहले तो अहाँ सारे ये सोचते न तो हाँ क्या मम्मी यही कि जल्दी जल्दी जिड़े से ठंडा ठंडा पानी चाहिए से फ्रिज दा पानी अहाँ पी लीए तो कुथी ना कुथी सभी अहाँ दी सेहत जो नुकसान जिड़े से जरूर पहुँचाते है तो है पानी ठंडा पर सेहत जो नुकसान जिड़े से जरूर दे दे कने अगर अहाँ घड़े दी गल करिए तो घड़े दा जिड़ा पानी है से अहाँ दी सेहत वास्ते भी ठीक है कने अहाँ अहाँ वास्ते ठीक है कने थोड़ा ठंडा पानी होंदा कने मिट्टी दा जिड़ा टेस्ट है सभी अलग ही होंदा तिस पानी पीने दा अलग ही अंदाज है या अलग ही जिड़ा फायदेमंद है। तो श्रोताओं तो सारी भी कार्यक्रम दे सफ़र कने जुड़िया कने अहाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची होवे फेसबुक दे माध्यम ने तो जरूर तिना तक अहाँ पहुँचाते न ये गीत ये फरमाइश से रहने वाले न खन्यारा ते कने तिना दा ना वे चरणदास तो जरूर ये गीत है गीते दे जड़ा बोल हैं जाना मुसाफिर कने जो गया वे करनैल राणा जी ने तो जरूर तुह सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

0: है कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपने रेडियो दो शशि कन्या तो हाँ सारे ही सुनिया ये गीत ए फरमाइश कौन चारे बकरियां तो कौन चारे कौन मारे सींडा तो जरूर तो हाँ जो ये गीत पसंद आया होना है कने इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए तंगलोटिया ते कने तिना दा ना वे रमेश जी तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया तो श्रोताओं संडे का ये दिन खास है ना तो हाँ वास्ते जरूर खास तो होना चाहिए अगर तो हाँ इस सफ़र कन्ने नहीं जुड़े हो ना तो जल्दी जल्दी इस सफ़र कन्ने जुड़िया तो हाँ सारे जो ही इस सफ़र कन्ने जुड़ने वास्ते जिहड़ा इंतजार है से रहिंदा है कि कालू दिया दो बजदे न कने कालू दिया हाँ इस सफ़र कन्ने जुड़ते न कने जिहड़ा फरमाइशा न सभी तुहां तक कहां पहुँचाते न तो जरूर जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम के सफ़र कन्ने जुड़िया परिवार की अह गल करिए बार बार हर चीज़ पर गौर करना जरूरी है चाहे परिवार है चाहे अहां दे रिश्ते न चाहे कोई भी दोस्ती है हर चीज़ अहां दी जिंदगी च मायने रखती है परिवार जिहड़ा है से खुद ब खुद नहीं बिखरदा जिहड़ा अपने न कई बार अहां रिश्तियां च अनदेखी जिहड़ा है से जरूर करिंदे न सही अहां दी अनदेखी अहां दे परिवार जो जरूर जिहड़ा है से तोड़ी दी है कई बार अहां ये भी सोचते न कि रिश्ते जिहड़ा न से बारा ते जिहड़ा है से टुटी आंदे न या बारा वाले जिहड़ा लोग हन से तोड़ी दे न पर अपना अहां व्यवहार किस प्रकार रखते न ये तो अहां सोचते ही नहीं हैं क्योंकि परिवार च प्यार भावना व्यवहार अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है से तो हाँ सारे जो ही पता है परिवार च तो हाँ सारे ही रहते न परिवार जिहड़ा से किस प्रकार चलता ये भी तो हाँ जो पता है कि परिवार चलाना ठीक है अहाँ अगर मिट्टी का जिहड़ा मटका है उस जो बनाने वास्ते कितना समय जिहड़ा से लगता है कुम्हार जिहड़ा है से उस जो बनाने वास्ते बड़ा टाइम लगांदा कने अगर अहाँ ते सही मिट्टी का मटका टूटी आंदा है तो उस जो एक सेकंड या एक मिनट जिहड़ा है से बिल्कुल नहीं लगती है तो ज़रूर परिवार जो हमेशा संभाली करी रखा कने प्यार भावना एक ही दुए अंदर रखा अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात हेलो
1: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी ठीक ठाक जी
0: जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी
1: मेरा दा ऋषि मैं नगरोटा सूरियां ते बोला करदा
0: जी ऋषि जी क्या हाल चाल है नगरोटा सूरियां वाले दे
1: ठीक ठाक ना हाल गर्मियां ना बेहाल ना बाकी ते ठीक है
0: जी अच्छा गर्मियां नहीं बेहाल है
1: जी
0: ओ नोई ताजी सूर्य नंगरोटा दी
1: फसला दा काम लग्या मक्की बिजाई वगैरह
0: जी अच्छा मक्की जिहड़ा से तुहां बीजी थी है
1: हां जी
0: जी और क्या क्या जिहड़ा से तुहां बीजी था
1: फिलहाल मक्की हुंदी अपनी साइड धान हुंदे नी
0: जी जी
1: जी ड्राई एरिया दा
0: जी
1: हां जी गाने दी फरमाइश है सैले बागे दा मोर
0: जी गाने दी फरमाइश है सैले बागे दा मोर
1: हां जी
0: जी तो तुहां इस कार्यक्रम जो रोज ही सुन दे जी
1: रोज ता नहीं सुन दा बट हफ्ते दा तीन ते चार बारी जल्द भी मैं ट्रैवल करदा मैं ट्रैवल करदे टाइम सुनदा
0: जी तक कदे लगदा तुहां जो ये कार्यक्रम
1: काफी अच्छा लगदा जी
0: जी
1: अपनी लोक संस्कृति हिमाचली जो बढ़ावा देने दा मौका मिलता है ना हाँ एक तो पुराने जिहड़े गाने नहीं भी सुने होंदे दिमाग च निकली चुके ओह भी कोई ना कोई श्रोता जिहड़ा से फरमाइश करिंदा है ना साडे तक पहुंची जांदे ओ माइंड च आई जांदे फिर
0: जी जी कने जिहड़ा तुहां गीत दी गल कीती तो कुथी ना कुथी ए जिहड़ा अहां दे पुराने लोक गीत हन से अहां जो कुछ ना कुछ सिखाई करी भी जांदे न जी
1: हां जी
0: सीखने जो भी अहां जो बड़ा कुछ मिलदा है ना गीत संगीत ते
1: हां जी
0: जी पर हुण जेड़ा गीत निकला दे तिना दा ता कोई मतलब अलग ही ना तिना च सहवाला
1: म्यूजिक ही रही या म्यूजिक ही रही या बाकी कुछ नहीं है
0: जी म्यूजिक ही है ज्यादा कने तिदे बोल क्या है ना सभी कोई पता नहीं है ना जी कने अगर तो हां पुरानिया गाणिया सुन गए तो तिस च तो जो जेड़ा गाना है उसका पूरा मतलब पता होना है ना जी
1: हाँ जी
0: जी, तां ऋषि जी जुड़ने वास्ते तुहंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। जरूर तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੰਨੇ ਤਰਸ਼ੋ ਤੋਂ ਇਸੀ ਕੰਨੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰੀ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਔਰ ਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ अपनी जेड़ा पहाड़ी बोली है अपने जेड़ा लोक गीत है ना सभी तो सारे जो पता है कि यहाँ कुथी ना पहाड़ी बोली जो भी भूलते चलो या पेरेंट्स जेड़े ना से अपने बच्चे जो हमेशा बच्चे ना ठीक है कि हिंदी बोलना भी हाँ वास्ते ज़रूरी है पर अपनी जेड़ा लोकल लैंग्वेज है तिहा जो हाँ कुथी ना कुथी भूली चलो तो ज़रूर अपनी लोकल लैंग्वेज जो नहीं भूलना है कन्ने तिहा कन्ने हमेशा जुड़े रहना है अपनी संस्कृति कन्ने जुड़े रहना है क्योंकि अहां दी जेड़ा संस्कृति है से अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। तो शुरू तो चलते न गीत दी ओर ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है स्माइली जी कन्ने से रहने वाले न धर्मशाला से ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾ ਆਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਚਲਦੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਇਸਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਕਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਪੰਦੀ
2: ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ जिसे देख के मुझसे कहेगी कि वो मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है क्या मेरे सपनों की रानी मुझे

सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे ही सुनिया एक गीत गीत बड़ा प्यार है हर कुसी दी अपनी अपनी जेड़ा पसंद है से जरूर होंदी है तो जरूर इसी पसंद कन्ने हाँ फिरी ते थोड़ा दे आग्या बढ़ना है कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है थोड़ा मोबाइल फोन की ओर अपनी नज़र जड़े से दौड़ाते न कि ये फरमाइश अहाँ तक जड़े से कुते आई हुए कने तिनां दा ना क्या वे तो जरूर ये फरमाइश अहाँ जो आई हुए रामनगर ते कने तिनां तक अहाँ ये गीत पहुँचाना है तो सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा।

तो श्रोताओं तो सारे गीत इंजॉय किया कने इस गीत की फरमाइश जिहड़ा जगह का नाम है तुह तक जरूर पहुँचाया था कि रामनगर ते फरमाइश अहां जवाई होवे कने तिना दा नाम है निर्मल कुमार जी तिना तक अहां ये गीत ते फरमाइश तिना दी पहुँचाई कने इसी कने अहां अग्गे बढ़ते हैं कने अगली जिहड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाते हैं अहां दे जिहड़ा श्रोता हैं से जरूर इंतजार पर हैं तो तिना दा इंतजार जिहड़ा है से बिल्कुल ख़त्म कर देना।

लिए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे सुनिया ये गीत फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह जो आई वे सूर्य नगरोटा ते कने तिना दा ना वे ऋषि जी तिना तक अहां ये गीत पहुँचाया कने इसी कने अहां ये भजन मेघना जी तक पहुँचा देन जेड़ा तिना भजन की फरमाइश की थी से जरूर से अहां जो नहीं मिलिया तो अहां ये भजन जेड़ा से तिना तक पहुँचा देन। तुहां सारे भी इंजॉय करा कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो तुहां सारे इसी कने अपनी रेडियो दो शशिश दया अनुमति कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंथी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना।
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता, जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
10: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
11: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
13: सॉरी यार,
14: काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, संध्यों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: वाह, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

नमस्कार श्रोताओं, 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊं तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम में लेकर हिंदी अपनी अपनी गप्पा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोता रहा, जितने भी श्रोता सु हूँ करते ने तह दिल थो स्वागत कर दे। अये जी श्रोताओं, आज यह कड़ी हिन कसी होगी गलबात करनी है, क्या गलबात करनी है, कस विषय पर गलबात होने ये सब है तुस वो जरूर दस ले। लेकिन तथों पहले आगाज कर लेन कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीत होगी और तथों बाद आज की जो शख्सियत जो अस होगी बेखुर तीन होगी तुम्हारी मुलाकात की असो जरूर करन देन। हूं दिन पहले ये प्यारा दिया

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा हो रहा हूँ तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हा। आइए जी आज है पूज्य ने करमचंद जी ले जो कि योल कैंट्रे निवासी ने करमचंद जी थो जाने लेंदे ने श्रोतों यारे बारे थोड़ा करे भी तुसु दसना चंदा आईपीएच डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे चुक रहे ने और अब रिटायर्ड ने अब घर है खेती बाड़ी और घर रा काम कार की सो कर देने तैयार थो आज सु जानना यार एक्सपीरियंस जानना सु एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट थो लेकर रहने एक्सपीरियंस जो अह खोई चुक रहे आज की डेट में जो अस वो आज की डेट में हो जो ना कर दे सो क्या चीज़ आ सो ये चीज़ आ श्रोता हूँ कि अगर यह है कुल्ला री गल कर आज की डेट में तो कुल्ला है कर खा न कर खा भूली चुक रहे इनकी कुल्ला बुंदी क्या थी यारा निर्माण किया बुंदा तो एक अस कम्मा जो इंदी थी और आज की डेट में कुल्ला सो हिरने जो भी न मड़ूंदी तो सभी पहले तो करमचंद जी तुम्हारा वेड़ी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है
1: अभिनंदन धन्यवाद धन्यवाद जी
0: जी तुम्हारा भी धन्यवाद है। तो करमचंद जी टॉप फ्लोर थो गल कर देने यानी कि स्टार्टिंग थो गल कर देने जड़ी थो कुल्ला है बंद है ना जड़ी थो इंदी ने कहो कि आज की डेट में है गल करने था यूथ जो भूल सकता ना पता हुआ ना या कईयो पता भी भूला कईयो ना भी पता हुआ था इस कार्यक्रम के जरिए है दस सकते ना कि कुल्ला आखिरकार इंदी कौन थी
1: कुल्ला सब तो पहले कुल्ला चलती थी दरिया थो पहले कोई भी खड्डा कोई दरिया कोई नाला जो स्रोत पक्के स्रोत होंगे जो 12 महीने 10 महीने पानी होंगे सभी टोटे बंडीने जिया जिमदार ने सब अपने अपने टोटा भी तू खाना बनाना रख रखाव और पानी इंदा फर्स्ट क्लास साफ सुथरा पानी और इंदी खेत तकर पुजता तू मतलब हर जहाँ भी फिर बरखा पे खनक फिर गाना गंदा तू फिर कोहली पानी फिर 10-20-50 बाद भी फिर गंदे अच्छा। आज की डेट में ये है कि कोहली बहुत डरदा मरे चा बेचारा 10-20 तक और दो मनु भी बुजान सब बड़े बड़े और हर अके बजूरा अज मन भी ट्रेंड है कि जो कर ले सरकार कर ले पक्की कोहला बनो रही पर सरकार ही बनना एक अर्थ कम जो सरकार अब ठीक हों कि थोड़ा बहुत आपू भी इंसान जो सुटकना चाहता सोच होना चाहिए कि असी जमीन पानी अस भी लगू तो एट ए टाइम 24 घंटे तो दिया देख रहे हैं तो हाड़ू पानी बंधना वो अच्छे तो बस कुल्ला टप्पा ले चसते आगू खड्डा तक रुकना गंदा
0: तो आइए होर बहुत कुछ जान लिया करमचंद जी थो लेकिन हूं देने अक प्यारे दे करमचंद जी री कोई फरमाइश बहुत है तो दस सकते जी अस तुम्हारी फरमाइश में कोई गीत
1: कुल्ला उठी चल गान कुल्ला रा गाना होना
0: रुल कुल्ला ठीक है रुल्ला दी कुल्ला आइए श्रोतो हूं देन ये प्यारे दे गीत

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा। सचिन कपूर सो की कार्यक्रम होने कर दें हिंदी अपनी गप्पा और आज सोगी मौजूद न करमचंद जी। तैयार करमचंद जी होगी फिर गल बात कर दें और करमचंद जी ता जने कोल्ले आवाज के मार दा तो अगर अस तो है 5 साल पहले भी गल करना या 10 साल पहले भी गल करना तो सो प्रत्येक घर किसी करे हरेक घर किसी करे कल्ला कल्ला आवाज मार दा तो कि क्या है सो सिस्टम के रन दा तो आवाज
1: सिस्टम मारना है। समझो कि हर ग्राम आके चौरा आंदा ये कुटियाला कोई खास जगह जड़ी की खरी आबादी घणे है टटस आवाज मारने है ते आवाज मारने होदी है किसी पानी कूलर आ गया है पूरे हाड़ू लाड़ू खेतों में दाना यो कणक यो तो यूज करना ही करना और 12 महीने इंदे गुरु बच्छू सब और नीणा धूना कपड़े धूना भांडा बर्तन ईवन कि ये नहीं बेगा बेगा पानी है तू थोड़े खाने दे पीने वास्ते कूलर ही यूज कर अज उन्या कूलर वो आला तो कितना हाथ ला सके अजकल है ना सब भी अपने घर रहे जो भी डिस्पोजल जी के अपना बाथरूम का पानी सो भी कूला सट हुआ चले रहा पानी कूला सट हुआ रसोई का पानी और जो भी गंद फंद कूला में कूड़ा करकट ईवन सरकार है भी पक्की बनाई तो भी कूला हर जगह हर ग्राम में पक्की कूला ने पता जरा फायदा ना कोई मन गंद पाई दूंगा और पक्की कूला वैसे ही बनोरी ना तो शिकायत भी है कितना ना पशु पानी पी सकता
0: डुगी
1: ना पक्षी पानी पी सकता पक्षी उतरला बेचारा तो सूढ़ी खाना पशु कह लियो उसी उतरली कोई नहीं सकता
0: कोई नहीं सकता
1: धर्मशाला
0: मंच

0: सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हूँ गर्दन कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा सचिन कपूर सोगे और मौजूद न करमचंद जी। तो करमचंद जी मुझे दसा कि जहने कुल्ला बनाना तो है दसो कि दरिया जो गंदे थी है पहले तो खरे बंदे गंदे थे पंजा बंदा बचगो भी पच्ची थी जितने बंदे गंदे थे तो सो सब क्या खाना खुने भी ले गंदे थे सो के कि क्या सिस्टम क्या टोन रहते थे तैयारी
1: खाना खुना कहो अजकल ये तो ना बेगा नौ दस बजे खाई लेना अच्छा। कुल्ला चले जाना दिन खाने ट्रेंड अवे चलो अच्छा पहले दो टाइम जी खाई बेगा चले गया अपने कमां चले गया समझा चिदा तैलू कर लो ये भी कुल्ला बनाई गिरी ना समझा ती कुल्ला पानी के कमां रुख बड़े लगते बड़ी दुकाना
0: बिल्कुल इस तरीके री चीजा के जो अज अस वो मोड़ू कर दी ने जी की करमचंद जी ये दस के चीज़ा बड़ी ज़्यादा उपलब्ध थी तहने ना जी कैंपेन पुछ गए दुकाना पुछ गई और ये मनु ऐसे थी जो बेगा 9-10 बजे खाई कर चली गंदे थी पूरा दिन तड़ी बड़ी मेहनत होगी सो कुल्ला बनंदे थी है ना कितनी मेहनत होगी कुल्ला बनाए बुनाए करे था फिर ही लेंदा और सोगे कुल्ला सोगे चलते थी मतलब करिए भी किया सो टोटे नगर छा बाजे नगर छे ये गल भी करमचंद जी होगी जरूर कर लेकिन अया हूं दिन तथों पहले ये प्यारा दिया गीत।

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हम कर देना और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही ने तुंदे रेडियो गुंजन मा श्रोतो तैयार कार्यक्रम जो थोड़ा करी और हगो बढ़ देना। और करमचंद जी हो कि पूछ देन कि करमचंद जी जहाँ कुल्ला बनाई गई तो है दरियात हूँ या तुंदे जितने भी तस समय साथी थी है सो उत्तर दे थी है तो कोई सपोर्ट कोई सहारा गसीरा कोई खाने पीने वास्ते कोई पूछता थो या कुछ इस तरीके की गल तो जरूर दस।
1: कोई ना जी कुल्ला रखने जो कोई घर नमी भ्रो चली ग्रां चली घर झूने तो पूरी कुल्ले कुल्ले कि भी करके पानी जारी देना गो करके टूटी देना गो करके डंगा नहीं रहा छोटा मोटा अब 2.5 किलोमीटर दूर कुल्ला तो 300 सौगी तो जी पेट्रोलिंग कर दे ना।
0: अच्छा।
1: कि अपने ठिकाने तक पानी पजाना तो तुम पहले पजाई ना फिर जन जी सीजन हम दो पानी बनने रहा चलो जो कि छली पानी बनो दाना तो कई बार राती अपने ठिकाने ठिकाने होंगी तोड़ त्राड़ करके तड़ी पैरे वास्ते राती भी कटनी सोई रहना पैरा देना फिर पानी आगू चलूगा फिर राती राती खाना जी टोर्चा ले जी दाना टाइम अब इन्हें कहता कोई अपना परिवार मार दिया जटूर लोग करते रख देना पानी मोर दे बरखा लगा रहे और देव कुल्ला रख सहयोग रहा वो गराटी रख जी अक्की कुल्ला में दो ही चोर गराट जरूर होंगे ही है आपकी वो अख किलोमीटर 15 मीटर दो तीन तैयार बड़ा सहयोग हूँ सो भी तीन पानी जरूर तुम्हें बेचारे तीन पानी बनी ली ना तो ग्राई ही होगी सो पानी मुड़े गंदा होगी
0: घराटी रहा सहयोग के सो है जानो के जो घराट होंगे थी तेरा

0: सहयोग किया सोइया जो मुलदा थो तो करमचंद जी कदी मतलब ये भी बुआ कि दुई दुई राती भी पई कदी कि अक्की राती अंदर समाप्त हो चुके अंदर तो काम
1: नहीं जी ऐसा ना खेड़ा है तुम दीर दिन था महीना महीना लगता उन खेड़ा है आज मेरी बारी है जो सेरी बारी है तो क्यों आज मेरी मुँह की ये तो मुँह तो तेरे मुँह ना आना थे आगे दो मेरी बारी है कस की आज मैं जो होगी की शुरू तमाम चले गए ना सबकी भी अक्की तो मेरे साथ दिन तेने आजकल तो बोला छठ पुर हो रहा है मेरी सी क्या गच्छा हो रहा
0: आइए शो तो गलबात ही चलती रहनी हंसी मजाक करमचंद जी हो गए चलता रहना हूँ ने प्यारे दे गीत।

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कोटो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा चल रही है। करमचंद जी या सोगी मौजूद न और हुनु करते न कार्यक्रम सचिन कपूर सोगी ता आइए श्रोतों करमचंद जी होगे गल बात कर दे। करमचंद जी एक कार्यक्रम पूरा हुआ बुने वाला मतलब कुछ एत आया कुछ याद आया
1: याद ये मिंजो की बड़ा बड़ा धन्यवाद की पुरानी याद तो है ताजी करी है जी।
0: अच्छा
1: ये पहले कुल लगन दे ही है राती कटनी विघराटा है गाना बड़ा बड़ा धन्यवाद पुरानी याद तो है ताजी करी और ये तब क्या कहूँ गाना माड़ा ने गुनगुनान दा
0: जी जरूर जरूर कह जो कि अच्छा तो जो जवानी बुंदे ना तति अंदर बहुत सारी यादा के अनुसो कैद बुंदी ना जो अगर कोई तह फीलिंग जो टच कर दिया तो सोकर खन अगर खा उभरी करे फिर बाहर निकल दिया ताजे एक दिन हिंदे करमचंद जी री क्या फीलिंग किया सो उभरी करे रेडियो गुंजन में बूंज दिया
1: बेटा तेरिया हो चुभ दिया।

नीलमरिया चलिया इदा जो जो लगदा आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगो बढ़न देन और करमचंद जी यो थोड़ी करी याद आया तो से यादी अंदर प्यारे दे गीत है जरूर होंगे।

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा हुनु कर देने आज मौजूद न करमचंद जी जो कि ओल्ड कैंट्रे निवासी ना और सोगी सोगी हम तुम अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर है। तैयार श्रोताओं अब इजाजत लेने रा दिल तो न बनता लेकिन क्या करिए समय अनुसार असू भी चलना पैना। तो करमचंद जी तो है असू जो यूथ होनो करता तीनों तो है थोड़ा करी याद जरूर दिलावा कि तो है किए किए गंदे थी है कितने दिन लगते थे कितनी मुश्किल उसको फेस करना पड़ती थी क्या कुछ चीज़ तड़ी तहने अवेलेबल ना बुंदी थी आज जो अवेलेबल न तो गंदे गंदे तुंदा जितने भी है यंगस्टर होनो करते हैं तीनों क्या बोलना चाहते हैं क्या संदेश है तुंदा।
1: मेरा संदेश यह ना कि जिया पहले कुल्ला चलती थी चलाई रखन और कुल चलने हों मेरे फायदे मक्खी मच्छर जिया ग्राम साफ सफाई हरियाली रेंदे आ जी रुख बूटे सो हरियाले रेंदे तो हूँ जी पानी सिमदा रहा पूरे ग्राम से कुल क्रॉस करने तो करके निकल की टेरा पानी कोई ना कोई जड़ कुछ भी अपने पानी खिंची लेंदे तो यह है कि हरियाली और साफ सफाई जी कुल्ला चलने हूँ और मेरा संदेश है अगली जनरेशन जो कि भी कुल्ला आयो जी बिन जरूरी किसी भी तरीके चलाई छड़े
0: तो करमचंद जी अब तुसु लगता कि जो यूथ आ सो कुल्ला बनना आवे गल्ला तुसु हिंजे
1: ना जी कहने दिए फसी गाने हाथ को गाना पे
0: अच्छा बड़े
1: कहने दिए अपनी समझ चली ली कि नहीं जी कुल थोक तुम्हारा क्या फायदा तो जरूर गाना कोई आजकल बच्चे सब पब्लिक समझदार भी नहीं ऐसी गल नहीं सब कोई नहीं ना कसी न कसी इले इले जागृति
0: अच्छा
1: ना यार इंदे बुजुर्ग कर दी तो है कुछ ना कुछ करी
0: करी करी बिल्कुल पर तो है बड़ा अच्छा संदेश देता और बड़ा बढ़िया टॉपिक है या सुसभी वास्ते है ना इंदी रूट्स होगी जूटरा टॉपिक है तो करमचंद जी तुस होगे मुलाकात भी होया बड़ा अच्छा लगो और इस संदेश भी तो है इंदी कम्युनिटी गद्दी कम्युनिटी जो देता है ये भी बड़ा अच्छा लगो तब है गाने रहा दिल ना बोलूँ पर गाना बहना
1: धन्यवाद जी सचिन कपूर जी तो है जे इंदे रूट्स वास्ते ये गलत काम करू करते हैं जी हर इंदी कम्युनिटी हर चीज़ें जो भरू चुकू करते हैं या जागृत करू करते हैं इरा बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी तुंदा भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आइए श्रोताओं गंदे गंदे प्यारे दे गीत जरूर होंदे गंदे गंदे सॉन्ग मेरी टैगलाइन जरूर बनला हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडियो गुंजन में सचिन कपूर जो होंदे रहे धन्यवाद।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास समाचारों की हेडलाइंस पर। अमरीकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला। दिल्ली उत्तराखंड में खालिस्तानी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले फील्ड कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। ग्रीन एनर्जी व नैनो टेक्नोलॉजी में शुरू होंगे 4 नए कोर्स। अब डिपो में राशन कार्ड नंबर डालकर भी मिल जाएगा राशन। अब समाचार विस्तार से।

तकनीकी शिक्षा आवास एवं नगर नियोजन तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश तिरमानी ने कहा कि सतत संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों से सीखना समय की आवश्यकता है। उनका कहना है कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान प्रदान से प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक विकास मॉडल तैयार करने में सहायता मिलती है। धर्मशाला स्थित रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नॉर्दर्न चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान कर एक दूसरे के अनुभवों से सीखना था। होर्मुज जल डमरू मध्य में शनिवार को एक टैंकर पर हमला हुआ। ये घटना उस समय हुई जब बहरीन ने कहा कि ईरान ने उसे निशाना बनाकर हमला किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा जारी रहती है तो जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली एवं उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तानी आतंकी हमले का कथित खतरा है। इस खतरे को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुरक्षा अलर्ट में दिल्ली एवं उत्तराखंड में मंदिरों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस इमारतों पर भी खतरा होने की आशंका जताई गई है। अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने वाले फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिजली के खंभों पर कार्य करते समय रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर मामला है और ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने ग्रीन एनर्जी एवं नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी और एमटेक सहित चार नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है जो इसी सत्र से शुरू होंगे। इसी ने पीएचडी शोध को राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान संस्थानों से जोड़ने का निर्णय लिया। शनिवार को परिसर में हुई इसी की बैठक में इस तरह के कई फैसले लिए गए। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में अब राशन कार्ड का नंबर डालकर भी राशन मिल जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड मोड का विकल्प डाल दिया है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर राशन मिल सके। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग का आभार जताया है। देवभूमि की तीन होनहार बेटियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर अमेरिका में प्रदेश का डंका बजाया है। टांडा मेडिकल कॉलेज की होनहार पूर्व छात्रा डॉक्टर श्रेया कटोच, डॉक्टर सुरभि डडवाल और आईजीएमसी शिमला की पूर्व छात्रा डॉक्टर अनुभूति वाश्यानी। देश में बढ़ते गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाना अनिवार्य है। मानव तस्करी रोकने को 4 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। साथ ही सभी पुलिस थानों को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा गया है जहां गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और मानव तस्करी से जुड़े मामलों का रियल टाइम डाटा उपलब्ध रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने शनिवार को चंद्रमा तक पहुंचने का एक और टेस्ट पास कर लिया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया गया।
इस टेस्ट को 175 टन के बेहद ऊंचे भ्रष्ट लेवल पर अंजाम दिया गया है। ये इस सीरीज का आठवां सफल टेस्ट था। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य इंजन की प्री वर्नर इग्निशन के बाद की क्षमता का जांचना था। इसरो ने इस बार 88% की क्षमता पर इंजन को चलाकर अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा मनवाया है। प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6V का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में तंबाकू निषेध के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक स्कूल के मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर निर्धारित प्रारूप से तंबाकू निषेध संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़ा बंगाल दौरे से क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल का दौरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में रात्रि प्रवास किया है। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और दिए गए निर्देशों से बड़ा बंगाल के विकास को नई गति मिलेगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में रंगे नजर आए। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य में भी सहभागिता की। करीब 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर सिर्फ कांगड़ा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र बड़ा बंगाल के लोग खुशी से चहक उठे। खासकर उन युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था जिन्होंने बचपन की दहलीज को अभी अभी लांघा है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखने का सपना पूरा हुआ। लगभग 1.5 दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री न सिर्फ बड़ा बंगाल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बल्कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी रात स्थानीय लोगों के साथ बिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। ये पहली बार नहीं जब श्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों का दुख दर्द साझा किया। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की नई सोच के साथ वो लगातार ऐसे कठिन क्षेत्रों में रात्रि ठहराव करते आए हैं जहां आमतौर पर कोई नेता पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और शाम के 6 बज गए हैं। श्रोताओं, ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का और इस कार्यक्रम को रोज़ाना हम लेकर आते हैं आपके सामने। रोज़ाना आपके सामने कोई ना कोई आरजे जो है वो इस कार्यक्रम को लेकर आता है और बातचीत करते हैं और आप तक जानकारियाँ भी पहुँचाते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपका दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आज आपने जो जो सोचा होगा वो सभी काम जो हैं वो पूरे हुए होंगे श्रोताओं। और फिर से वही बात, अगर नहीं भी पूरे हुए हैं तो निराशा बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, आशा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा काम ज़रूर होगा। उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और सही समय आने पर हर काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप इस समय जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम का समय आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आप सभी सुनते हैं रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और इस कार्यक्रम में आप सभी को पता है कि जानकारियों का पिटारा भी हम लेकर आते हैं, जिसमें से एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है और साथ ही कुछ ना कुछ बातचीत आपके साथ ज़रूर होती है और साथ ही गीतों की एक माला भी पिरोकर लेकर आते हैं, जिसमें से एक एक मोती हम आपके सामने रखते हैं आपके रेडियो पर। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। सच्चा धन सोना या चांदी नहीं है, बल्कि आपका स्वास्थ्य है। इसलिए हम रोज़ाना स्वास्थ्य पर बात करते हैं और आपसे यही कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए। तो श्रोताओं, जल्दी से जुड़ जाइए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है कार्यक्रम में और जो नहीं जुड़े हैं उनका इंतज़ार हम अभी भी कर रहे हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं हीर रांझा फिल्म से और आवाज़ रहेगी लता मंगेशकर की।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, शाम का ये समय है और इस समय में आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो बाहर का जो हाल होता है सुबह और शाम का, खास करके रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और आज संडे था तो इसी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन आए दिन सुबह के जब 9 बजने वाले होते हैं उस समय और शाम को जब 5 बजते हैं, 5 बजे के बाद रोड जो होता है वो बहुत बिजी होता है। हर किसी को अपने घर से अपने कार्यस्थल तक पहुंचने की जल्दी होती है या कार्यस्थल से वापस अपने घर जाने की जल्दी होती है। और श्रोताओं, कई बार देखा गया है कि जब हम लोग जल्दबाजी में होते हैं और थोड़ा सा अगर हम देर हमें हो रही हो तो हम लोग अपनी जो भी व्हीकल है उसकी जो रेस है उसे थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं कि जल्दी पहुंच जाए, देर ना हो जाए, लेकिन हम तब वो बात भूल जाते हैं जो बहुत जगह लिखी भी रहती है और कहते हैं ना कि कभी ना पहुँचने से देर भली। तो इस बात का क्या मतलब है हमें तब समझ आता है जब कोई ऐसा हादसा कहीं हो जाता है। और श्रोताओं देखिए, कहीं भी हमें निकलना है तो रास्ते में ट्रैफिक भी हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हम समय से निकले तो हमें देर नहीं होगी और हम आराम से अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और अगर अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं हम इनसे आगे निकल जाते हैं, खास करके जो दो पहिया वाहन वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए उसमें से हम निकल जाएंगे, लेकिन उसी दौरान कई बार कई हादसे हो जाते हैं और कई बार एक दूसरे के साथ हमारी झड़प भी हो जाती है, बहस भी हो जाती है, जिसकी वजह से और जो लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में यही कहेंगे कि थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य अगर हम में होगा और थोड़ा सा मतलब अपने आप को हम कंट्रोल में रखेंगे, अपनी जो ड्राइविंग है वो सही से करेंगे तो ना तो हमें कोई दिक्कत आएगी, ना ही रोड पर चलने वाले और लोगों को कोई दिक्कत आएगी और ना ही हमारा जो चलने वाला जो ट्रैफिक है उसमें कोई अड़चन आएगी। तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और रोड पर भी। तो इसी बात के साथ अब कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे एक और प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं श्रोताओं इक्का राजा रानी फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें इस कार्यक्रम को आप 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और सुन भी रहे हैं। तो श्रोताओं, जितने भी श्रोता हमारे हमीरपुर से या हमीरपुर के लगते क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी सुषमा का प्यार भरा राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि हमीरपुर के श्रोता या उसके आसपास के क्षेत्र के जो श्रोता हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। और गर्मी आज ज़्यादा पड़ी है और गर्मी से बेहाल वो होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत जो है वो मिली होगी क्योंकि शाम जो है वो ढल गई है और इस समय थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। तो श्रोताओं आपसे यही कहेंगे, मौसम कैसा भी हो अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं हम आपके सामने आपके समक्ष लेकर आते हैं और कार्यक्रम का एक विशेष हमारा एक मुख्य काम होता है आप तक जानकारियाँ पहुँचाना भी। तो बातें तो हमारी हो ही रही हैं, गीत भी आप सुन रहे हैं, तो अब चलते हैं जानकारियों की और लेते हैं एक जानकारी। श्रोताओं, करीब 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर सिर्फ कांगड़ा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र बड़ा बंगाल के लोग खुशी से चहक उठे। बिल्कुल, खास करके श्रोताओं उन युवाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिन्होंने बचपन की दहलीज को अभी अभी लांघा है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखने का सपना उनका पूरा हुआ। श्रोताओं, लगभग डेढ़ दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री न सिर्फ बड़ा बंगाल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचा बल्कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी रात स्थानीय लोगों के साथ बिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। ये पहली बार नहीं जब श्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों का दुख दर्द साझा किया है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की नई सोच के साथ वह लगातार ऐसे कठिन क्षेत्रों में रात्रि ठहराव करते आए हैं जहां आमतौर पर कोई नेता पहुंचने में रुचि नहीं दिखाता है। इससे पहले श्रोता उन्होंने शिमला जिले के डोडरा कुआर और कुपवी, कुल्लू जिला के बागा सराहन सहित जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर के दूरस्थ गांवों का दौरा कर वहां के लोगों के बीच रात्रि प्रवास कर उनकी समस्याओं और परेशानियों का समाधान किया है। और साथ ही श्रोताओं आपको बता दें, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बड़ा बंगाल के क्षेत्र के लोगों में उत्सवी माहौल है। स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल का दौरा कर उनकी सुध ली है। क्षेत्र में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के रात्रि ठहराव से स्थानीय लोग बहुत उत्साहित हुए हैं। श्रोताओं, बड़ा बंगाल के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में रंगे नजर आए। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य में भी सहभागिता की है। तो ये थी जानकारी जो आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और श्रोताओं, जानकारी के बाद आप सभी को पता है कि हम चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत अनोखी अदा फिल्म से और आवाज़ थी किशोर कुमार की। श्रोता इस गीत के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में समय है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा अंतराल लेकर हम फिर से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस समय आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। और श्रोताओं, गीत संगीत के बाद थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत हम करेंगे श्रोताओं आजकल के समय में, आजकल में जो व्यस्तता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज के दौर से पहले का दौर अगर हम बोलें श्रोताओं, तो जब भी हमें समय मिलता था तो हम लोग सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, घर के जितने भी सदस्य थे वो इकट्ठा होकर बैठकर अपने दिन भर की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और समय कब निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। खाना खाने का समय हो तब भी सभी इकट्ठे होकर बैठते थे और

बस उसके बाद कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी आजकल अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या फिर एक काम जो है वो सभी के पास आजकल हमेशा रहता है, वो रहता है मोबाइल फ़ोन पर अपनी उंगलियों को घुमाने का, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर हम लोग बहुत समय निकाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो और भी ऐसे काम करते हैं जिन्हें उन्हें करने में अच्छा लगता है, क्योंकि अगर घर का कोई एक सदस्य जो है वो मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है, तो दूसरा अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा पसंद नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं अपने समय को कहीं और बिताने में अच्छा समझता है। श्रोता, और ऐसी सोच होनी भी चाहिए, हमेशा मोबाइल फ़ोन पर हमेशा स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी और रिश्तों के लिए भी। बिल्कुल, रिश्ते जो हैं श्रोताओं वो सिर्फ खून से नहीं होते, बल्कि समय से, विश्वास से, अपनापन और एक दूसरे की परवाह से बनते हैं। अगर हम अपनों के लिए समय निकालेंगे तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां जो है वो आना स्वाभाविक हो जाता है, यानी कि हम अगर एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते धूमिल होते हुए नज़र आएंगे। तो ज़रूर समय जो है वो निकालिए, समय की कदर कीजिए, समय का एक टाइम टेबल बनाइए कि कब हमने कौन सा काम करना है। अगर हम घर में परिवार के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा समय उनके साथ भी हमें बिताना है। बिल्कुल, और श्रोताओं अब हमें समय कह रहा है कि चलते हैं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में राजकुमार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजकुमार फिल्म का ये गीत और अपने समय में ये फिल्म बहुत हिट फिल्म रही थी। श्रोताओं, आपको इस गीत को सुनकर आपको भी अपना पुराना समय याद आ गया होगा जब ये मूवी बिल्कुल नई नई आई थी, और मुझे भी थोड़ा सा याद आ गया कि बचपन में जब आजकल की तरह टीवी या इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था और संडे का ही समय हुआ करता था। संडे शाम मेरे ख्याल से 4 बजे का समय शाम का रहता था और फिल्म आया करती थी, कोई भी एक फिल्म, और राजकुमार भी शायद उन दिनों में आई थी और टीवी में दूरदर्शन पर हर संडे को कोई ना कोई मूवी आया करती थी और हम लोग भी फटाफट अपने काम निपटा कर टीवी के आगे बैठ जाते थे और अपने काम करने के बाद हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि अब हमें किसी काम के लिए आपने डिस्टर्ब नहीं करना है और हमें पिक्चर देखने देनी है। और जब उस पिक्चर के दौरान थोड़ा सा कहीं एक छोटी मोटी ऐड आ जाती थी, तब हम भाग भाग कर अपना कोई भी एक काम अगर छूट जाता था उसे पूरा करते थे ताकि कोई फिल्म का कोई सीन छूट ना जाए। श्रोता, वो भी समय था कि फिल्मों का इतना क्रेज़ होता था और एक ही फिल्म को हम कितनी बार देखते थे, और तब की फिल्में ऐसी होती थी कि हम परिवार में सबके साथ बैठकर देखते थे, मज़ा आता था, हंसी मजाक उसमें होता था और सच में कुछ ना कुछ प्रेरणा उस फिल्म से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता था। अच्छा बुरा बहुत कुछ हम फिल्मों से सीखते थे और फिल्मों में जब भी कोई ऐसा सीन आता था जो बहुत दिल को दुखाने वाला होता था तो हम और हमारे घर के और सदस्य, खास करके जो फीमेल्स होती थी, वो रोने बैठ जाती थी, तो हमें लगता था कि ये सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन श्रोताओं, देखो आज का भी वो समय है, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरीज़ जो है आजकल लोग देखने लगे हैं, लेकिन वो क्रेज़ जो था वो वही था और वो जो समय था वो समय वही था। तो इस गीत ने हमें कहीं ना कहीं पुराने समय की ओर लौटा दिया और आपको भी ज़रूर आपका पुराना समय, दूरदर्शन का समय याद आ गया होगा। खैर श्रोताओं, बोलते हैं ना कि हर चीज़ में बढ़ना बहुत अच्छी बात है और हम बढ़ भी रहे हैं, हर चीज़ में हम लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, मोबाइल पे सब कुछ हमें जो है घर बैठे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब साधन सीमित थे तो बात कुछ और ही थी। खैर, बातों को अभी यहीं पर रोकते हैं और आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं, बाजीगर फिल्म का गीत अब आप सभी सुनेंगे विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और ये 2 घंटे का सफ़र हम आपके साथ बिताते हैं और आप हमारे साथ। बिल्कुल श्रोताओं, और कार्यक्रम में बातों के साथ साथ जानकारियों का जो दौर है वो भी रुकना नहीं चाहिए। तो चलते हैं, एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तकनीकी शिक्षा, आवास एवं नगर नियोजन तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सतत संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों से सीखना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान प्रदान से प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक विकास मॉडल तैयार करने में सहायता मिलती है। रविवार को श्रोताओं, यानी कि आज धर्मशाला स्थित रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान कर एक दूसरे के अनुभवों से सीखना था। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हमने आप तक पहुँचाई ये जानकारी, और इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में फिर से चलेंगे एक प्यारे से गीत की ओर। आपकी कसम श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अब आप सभी के रेडियो सेट पर पहुंचने जा रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, इस गीत के बाद कुछ ही देर में यानी कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों से पहले ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, यानी कि समाचारों से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं छाया फिल्म से, और आवाज़ें दी हैं इस गीत को लता मंगेशकर और तलत महमूद ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।
1: दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्था सब समय पर समस्याओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में कृषि का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained effort for environment conservation. I bring with me the warm greetings of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राष्ट्रीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। जब उन्होंने पश्चिमी विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होमुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने ABC मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं कार्यक्रम के साथ आप जुड़े बैठे हैं हमें मालूम है, और अब देर न करते हुए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, तो लीजिए सुनिए आराधना फिल्म के इस प्यारे से गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, जिंदगी में अच्छाई और बुराई साथ चलती है, अच्छी बातें बुरी बातें लाइफ में होती रहती हैं, लेकिन कभी आपने नोट किया है कि हम लोग कौन सी बात को ज़्यादा जोड़ कर रखते हैं, सोच कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं बुरी बात को। अच्छी बात अच्छाई कोई भी होगी तो हमें वो तब तक याद रहेगी जब तक दूसरा इंसान कुछ बुरा हमारे साथ नहीं करता है। जैसे ही कोई ऐसी बात हुई, कुछ किसी ने हमारे लिए गलत किया या गलत बोला, तो वो अच्छी बातें पता नहीं कहाँ खो जाती हैं और वो बात एक जो है वो दिल में रह जाती है और बार बार हमें वही नज़र आती है। तो श्रोताओं, नज़रिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मुश्किल इसमें होती है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत यही है कि अच्छी बातों को हम तब तक ही याद रखते हैं जब तक अच्छा होता चला जाता है, और कुछ बुरा हुआ तो वो अच्छाई भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करूँगी श्रोताओं। दो भाई थे और वो कहीं टहल रहे थे। टहलते टहलते उन दोनों में आपस में कोई बहस हो गई और बहस में बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, और बस छोटे भाई ने क्या किया कि रेत थी उसके पैर के नीचे, रेत पर उसने लिख दिया, मेरा बड़ा भाई बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। ये चीज़ होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो लोग टहलते टहलते एक नदी के किनारे पहुंच गए और वहाँ वो नहा रहे थे। नहाते नहाते जो छोटा भाई था वो डूबने लगा, और जब वो डूबने लगा तो बड़े भाई ने उसे बचा लिया, और तब छोटे भाई ने बड़े से पत्थर पर लिखा, मेरा भाई बहुत अच्छा है। इस पर बड़े भाई ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा कि मैं बहुत बुरा हूँ, और जब आज मैंने तुम्हें डूबने से बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा। तो छोटे भाई ने कहा कि अपने रिश्ते को अगर ठीक से हमें चलाना है तो अच्छी बातों को ऐसी जगह लिखिए जो हमेशा रहें, याद रहें, कहीं मिटे ना, और कुछ अगर बुराई की बात हुई हो, कोई ऐसी वैसी बात हुई हो, तो ऐसे लिखो कि वो फटाफट मिट जाए। उसी तरह से हमें अपने दिल में भी कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए बहुत लंबे समय तक, और अच्छी बातों को याद रख के रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए, रिश्तों को बचाना चाहिए। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बाद फिर से चलते हैं कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत की और सुनते हैं इस गीत को मिलजुल कर।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और गीत श्रोताओं कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं, छेड़ जाते हैं बिल्कुल। और जब गीत ऐसे हों, और श्रोताओं गीत जो है वो साजो सामान के बिना अधूरा लगता है। ये जो आप गीत सुन रहे थे, इसके पीछे जब गिटार की आवाज़ आ रही थी, माउथ ऑर्गन की आवाज़ आ रही थी, और श्रोताओं मिलजुल कर जब गीत बनता है तो कहीं ना कहीं हम थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं श्रोताओं, और गीतों के साथ हमेशा बने रहा कीजिए। जब भी आप कोई काम करते हैं, काम के साथ साथ अपने कानों में ये थोड़ी सी धुन जो है वो बजती रहे, सुनती रहे, तो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, और काम कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और गीतों का ये जो सिलसिला हमने चला रखा है, इसे बिल्कुल भी हमने रोकना नहीं है, और आप तक पहुँचाना है कार्यक्रम में अगला गीत, ज़माने को दिखाना है। बिल्कुल, इस फिल्म का गीत अब आ रहा है श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद फिर से हम चलेंगे बातचीत की। और श्रोता कहते हैं कि एक अच्छा परिवार वही होता है जहाँ फैसले जो है वो सिर्फ सुनाए नहीं जाते बल्कि मिलकर लिए जाते हैं। अक्सर घर का मुखिया ये सोचकर अकेले ही निर्णय ले लेता है कि उसे सबसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन सच तो ये है श्रोताओं कि परिवार एक टीम है और टीम की मजबूती आपसी बातचीत से बढ़ती है। चाहे बच्चों की पढ़ाई का फैसला हो, उनकी आगे की शिक्षा हो, करियर की बात हो, घर के खर्चे की बात हो, बजट बनाना हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, नया घर खरीदना हो या कोई भी बड़ा निवेश करना हो, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले से पहले परिवार के सभी सदस्यों से खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल श्रोताओं, देखा गया है कि कई बार हम में से कोई एक घर का सदस्य कोई फैसला ले लेता है और जब सभी को पता चलता है कि ये फैसला ले लिया गया था और उस फैसले के बाद जो होता है तो काफ़ी सारे और सदस्य नाराज़ हो जाते हैं या फिर वो अपने ओपिनियंस देने लग पड़ते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। और जब हम वो कर बैठते हैं तब हमें भी लगता है कि काश हमने पहले आपसे इस बारे में बात कर ली होती, डिस्कस कर लिया होता। तो कहने का मकसद श्रोताओं यही है कि घर में जब भी कोई फैसला करना हो या कुछ भी बात करनी हो तो सबसे राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। सुझाव जो है सामने से आते हैं और ऐसे में हमें अकेले सोचने पर बहुत सारे फैसले हम कई बार गलत ले लेते हैं। जब सभी बैठकर इकट्ठे होकर कोई फैसला लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होता है। इसलिए श्रोताओं, कोई भी छोटे छोटे फैसले जब भी आप लेते हो, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनके सामने बैठकर बात कीजिए, उनकी राय लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे हैं तो हमें राय गलत देंगे। कई बार छोटी जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। इसलिए परिवार को साथ लेकर चलिए और कोई भी घर में कोई फैसला लेना है तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ कर ज़रूर उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। और कार्यक्रम में अब फिर से हम लौटेंगे गीत की ओर, चलते हैं श्रोताओं ब्लैक मेल फिल्म का ये गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और प्यारा सा गीत आप तक हमने पहुंचाया, अभी आपने ज़रूर इसे एंजॉय किया होगा। श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम करेंगे कि अब कुछ ही दिनों में बरसात जो है वो आने वाली है और झमाझम बरसात लग पड़ेगी और तब हम बरसात से परेशान हो जाएंगे। तो श्रोताओं, अभी का जो समय है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है साफ़ सफाई की, और ख़ास करके जो हमारी घर के बाहर की जो नालियाँ होती हैं, कुल्लें होती हैं, उनमें अगर बहुत सारा घास या बहुत सारा कचरा है तो हमें हमेशा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें, मिलजुल कर हल्का फुल्का अगर साफ़ सफाई पर हम ध्यान दें तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हम अपने आसपास रख सकते हैं। कई बार हम किसी और पर ही डिपेंड हो जाते हैं कि वो लोग सफाई करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन ये हमारी भी ड्यूटी है क्योंकि ये हमारा पर्यावरण हमारा अपना है, हमारा आस पड़ोस हमारा आंगन हमारा अपना है, और साफ़ सुथरा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा औरों को भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए और जब भी समय लगता है मिलता है तो थोड़ा सा घर के बाहर निकलकर जो नालियां हैं, ये जो कुल्ले हैं, इन्हें साफ़ कीजिए क्योंकि आने वाली बरसात में फिर हमें दिक्कत आती है। तो कार्यक्रम में बातों को यहीं पर रोकते हैं श्रोताओं और फिर से लिए चलते हैं आपको प्यारे से गीत की ओर, जिसे हम लेकर आए हैं दिल क्या करे फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में। ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कुछ ही समय बाद यानी कि 7:45 पर आप सभी सुनने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, और प्रादेशिक समाचारों से पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में एक और खूबसूरत सा गीत लव फिल्म से, और आवाज़ें हैं SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की। लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान राष्ट्रहित में की गई अपील पर एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आज सोलन जिला में कंडाघाट क्षेत्र में सकोड़ बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में स्थानीय लोगों व विद्युत विभाग के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इलाके में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी में लिफ्ट खराब पड़ी है, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला सहित प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में भी अव्यवस्था के कारण मरीज व तीमारदार परेशान हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में नई सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की धार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार ने सिरमौर जिला के संगड़ाह में पोलियो मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाने रखना है। शिमला जिला में 50,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाई गई। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मान महत्व देना आवश्यक है ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। धर्माणी ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात से सभी कार्य करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उप प्रधानों सहित BDC व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए काम करने पर बल दिया।
2: अगले 5 साल आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरो। आप जनता को वही मान सम्मान दोगे जो जनता ने आपको दिया। सभी काम करने संभव नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के काम को ध्यान से सुनना और अपना यथा संभव प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: पर्यटन विभाग ने कांगड़ा जिला की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पौंग झील में इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने सहित रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
3: इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सके और लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव, और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के उसको करे, और जितनी भी साइनेजेस है चाहे वो लेक में जिस तरह के कोई हादसा ना हो उसकी देखरेख के लिए जो भी नेसेसरी मैन पावर रखनी है, जो भी साइनेजेस लगानी है वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी करेगी, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है।
0: राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की 400 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। समापन अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता व उप विजेता टीमों को सम्मानित किया और चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और समाचारों के बाद अब कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का आज का आखिरी गीत फूल और कांटे। इस फिल्म का गीत श्रोताओं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में लीजिए सुनिए और इस गीत के साथ ही अपनी लेडी दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना।
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
10: मेरा
11: क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
10: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: हाँ?

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हैं। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास समाचारों की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला। दिल्ली उत्तराखंड में खालिस्तानी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले फील्ड कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। ग्रीन एनर्जी व नैनो टेक्नोलॉजी में शुरू होंगे 4 नए कोर्स। अब डिपो में राशन कार्ड नंबर डालकर भी मिल जाएगा राशन। अब समाचार विस्तार से। तकनीकी शिक्षा, आवास एवं नगर नियोजन तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश निर्माणी ने कहा कि सतत संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों से सीखना समय की आवश्यकता है। उनका कहना है कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान प्रदान से प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक विकास मॉडल तैयार करने में सहायता मिलती है। धर्मशाला स्थित रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नॉर्दर्न चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान कर एक दूसरे के अनुभवों से सीखना था। होर्मुज जल डमरू मध्य में शनिवार को एक टैंकर पर हमला हुआ। ये घटना उस समय हुई जब बहरीन ने कहा कि ईरान ने उसे निशाना बनाकर हमला किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा जारी रहती है तो जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली एवं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तानी आतंकी हमले का कथित खतरा है। इस खतरे को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुरक्षा अलर्ट में दिल्ली एवं उत्तराखंड में मंदिरों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस इमारतों पर भी खतरा होने की आशंका जताई गई है। अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने वाले फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिजली के खंभों पर कार्य करते समय रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर मामला है और ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने ग्रीन एनर्जी एवं नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी और एमटेक सहित 4 नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है जो इसी सत्र से शुरू होंगे। इसी ने पीएचडी शोध को राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान संस्थानों से जोड़ने का निर्णय लिया। शनिवार को परिसर में हुई ईसी की बैठक में इस तरह के कई फैसले लिए गए। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में अब राशन कार्ड का नंबर डालकर भी राशन मिल जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड मोड का विकल्प डाल दिया है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर राशन मिल सके। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग का आभार जताया है। देवभूमि की 3 होनहार बेटियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर अमेरिका में प्रदेश का रंका बजाया है। टांडा मेडिकल कॉलेज की होनहार पूर्व छात्रा डॉक्टर श्रेया कटोच, डॉक्टर सुरभि डडवाल और आईजीएमसी शिमला की पूर्व छात्रा डॉक्टर अनुभूति वाश्यानी। देश में बढ़ते गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाना अनिवार्य है। मानव तस्करी रोकने को 4 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं
कि 4 सप्ताह के भीतर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। साथ ही सभी पुलिस थानों को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा गया है, जहां गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और मानव तस्करी से जुड़े मामलों का रियल टाइम डाटा उपलब्ध रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने शनिवार को चंद्रमा तक पहुंचने का एक और टेस्ट पास कर लिया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया गया। इस टेस्ट को 175 टन के बेहद ऊंचे भ्रष्ट लेवल पर अंजाम दिया गया है। ये इस सीरीज का 8वां सफल टेस्ट था। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य इंजन की प्री बर्नर इग्निशन के बाद की क्षमता का जांचना था। इसरो ने इस बार 88% की क्षमता पर इंजन को चलाकर अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा मनवाया है। प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6B का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में तंबाकू निषेध के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक स्कूल के मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर निर्धारित प्रारूप से तंबाकू निषेध संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़ा बंगाल दौरे से क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल का दौरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में रात्रि प्रवास किया है। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और दिए गए निर्देशों से बड़ा बंगाल के विकास को नई गति मिलेगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में रंगे नजर आए। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक लोक

नृत्य में भी सहभागिता की। करीब 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर सिर्फ कांगड़ा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र बड़ा बंगाल के लोग खुशी से चहक उठे। खासकर उन युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था जिन्होंने बचपन की दहलीज को अभी अभी लांघा है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखने का सपना पूरा हुआ। लगभग 1.5 दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री न सिर्फ बड़ा बंगाल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बल्कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी रात स्थानीय लोगों के साथ बिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। ये पहली बार नहीं जब श्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों का दुख दर्द साझा किया। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की नई सोच के साथ वो लगातार ऐसे कठिन क्षेत्रों में रात्रि ठहराव करते आए हैं जहां आमतौर पर कोई नेता पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मां, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: समझियो के यहाँ पे 4 कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए 1 कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देकर रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
11: HIV AIDS अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: हाँ?

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।